0: सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। यह हमें बताता है कि एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाना होगा। सज्जनता का अर्थ है अच्छे चरित्र, नैतिकता और आदर्शों का पालन करना। यह हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। मधुर व्यवहार हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है और इसीलिए सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। जब हम सज्जनता और मधुर व्यवहार को अपनाते हैं तो हम अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
1: शुभप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रिवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के सितंबर महीने के आज 28 तारीख है और दिन है सोमवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो श्रोताओं, आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर प्रसारित होगा आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित

जनसेवा से देश सेवा का अगला संस्करण 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर आया हूं प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ आपका पसंदीदा कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, आनंद और शांति का एहसास होने लगता है। कान्हा की मधुर मुस्कान, उसकी मुरली की मीठी धुन और उनका दिव्य संदेश आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय को भक्ति से भर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम और करुणा का भाव रखें, कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। कभी वृंदावन के नतखत बाल गोपाल बनकर, कभी राधा के प्रिय श्याम बनकर, तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पहलुओं को सुंदर संदेश दिया। और आज के इस पावन भक्ति सफर में हम सुनने जा रहे हैं भक्ति संगीत के प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा की मधुर और भावपूर्ण आवाज में सुंदर कृष्ण भजन। तो आइए श्रोताओं, मन को वृंदावन की गलियों में ले चले, कान्हा के प्रेम और भक्ति में डूब जाए और शुरुआत करते हैं आज का भक्ति गीत कार्यक्रम।

श्रोताओ, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस सफर में आप सुन रहे हैं अनुप जलोता की आवाज में कुछ चुनिंदा कृष्ण भक्ति गीत। श्रोताओ, कृष्ण का नाम केवल भक्ति नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और जीवन को सुंदर बनाने की एक प्रेरणा है। उनकी मधुर मुस्कान और मुरली की धुन आज भी हर भक्त के मन को आनंद से भर देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे किसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही संदेश उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था।

हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकालकर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं है, ये मेरे कन्हैया है। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले, अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले, नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले, नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें कुएं में गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही हो मेरे कन्हैया। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। सूरदास

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालू श्रोताओं का समाचार, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर जूत फॉलोग चामनीगोला आलोपीन लोने आरोलो गालो मेंकिन मेलें जिदोंसी लूपर गदे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंतु पाकिस्तान लो टेररिस्ट काजिला दोनम इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्रिक रिकोजोक सुगो दोगो एम इंडिया के काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के एग्जाम्पल एम कातम का मन की बात प्रोग्राम एम आकाशवाणी लो मेरो सुगो दोगो एम एड्रेस दूला मेनकेन जिला भारत जिलों ने 28 सितंबर लो सर्जिकल स्ट्रिक न्यूरू दुताक कुनाम एम मनाई रेकु ओके चिगो दोगो निरेक ने सिफाई गादगे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एम क्रॉस नगे टेररिस्ट अगेंस्ट व अब्रिक अपके मिन्सिनाम एम अर्जिन व कान्यागे वा एला चिनमेंटु फियमेनला इने ने न्यूरू लो वालाकोट एयर स्ट्रिक लोकरुला ऑपरेशन सिंदूर लगावे भारत टेररिस्ट स्ट्रेगम मोरिक रिग्रे एला मेंदी मेंदी ला मेसेसम मेन बजितो लकलो भारत देश लो सीरियल ब्लास्ट कॉमन बरतो इजा देश गे एगेंस्ट टेररिज्म लो जीरो जीरो टॉलरेंस कादुकु एलाचिन जबतु वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन एम मेरो ईटानगर लोरिगदुला गवर्नर केटी पानियाकम स्टेट टूरिज्म एवार्ड एम जिलेन का ओगो वेस्ट होमस्टे एवार्ड एम चांगलांग टीका होमस्टे म्यूपुंग टूर्स एंड ट्रैवल लॉक बेला टीकाक ने जिका ओके कमेंडेशन एवार्ड एम जीरो सुसेसी होमस्टे एमला बोमदिला एम्बेसी एम जितु बेस्ट टूर ऑपरेटर एवार्ड एम MS हिमालयन हॉलीडेज ग सिरिंग वांगे प्रोपरेटर एम जिका ओके कमेंडेशन एवार्ड एम MS BAC वेस्ट ईटानगर नेला MS अनसियांग टूर्स एंड एक्सपेडिशन ग प्रोपरेटर्स गांधी दारांग मुन्यम जितु ओके दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट के टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2017 बेच लांगवांग आरांग में बेस्ट परफॉर्मिंग टूरिज्म ऑफिसर एवार्ड एम पातु स्टेट के चीफ मिनिस्टर पेमा कांदू में वर्ल्ड टूरिज्म डे ओकेजन लो ग्रीटिंग जिलेन तू सोशल मीडिया पोस्ट कोलोमेन ला टूरिज्म नी एमला कल्चर एम लकेन गब लादुम जिदो जोगो अपॉर्चुनिटी क्रिएट ला कल्चर ओके नेचुरल हेरिटेज एम अच्छी कोई व्यायाम मदो एला मेन्तु न्यू लेबर कोर्ट ओके साइल लेबर ग पेलेलो एयरनेस प्रोग्राम गो 62 RCC ग्रिफ अनिनी लो लोदुम गेतो प्रोग्राम एम लेबर लो आरालो लेबर्स ओके स्टाफ ग याद गो राइट्स वेलफेयर ओके बेनिफिट्स कादुद एगम चेनमो पामदो बे लोदुम गेतु प्रोग्राम जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्कर ओके स्टेक होल्डर्स ग पेंकोलो लेबर ग राइट्स मिनिमम वेजेस वर्किंग कंडीशन सोशल सिक्योरिटी साइल प्रोटेक्शन ILP ओके वेलफेयर स्कीम ग बाब एम अल जाब मेंतम रितम जिको आलो गबे रिबेनी मेन के नागम सिमनुन आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन लोक के तपादु ब्रह्मा कुमारी राज योगा मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर जोलांग ईटानगर लोमेरो माई हेल्थ माई प्राइस फेलेलो स्पेशल यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम गोरिगे का प्रोग्राम एम माई भारत अरुणाचल प्रदेश एला राज योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एंड ब्रह्मा कुमारी

सुप्रभात दोस्तों, नई सुबह नई उमंग और एक प्रेस सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह सवेरे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कारग और आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी शुरुआत जो आपके दिन को बना देगी हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री। दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो पूरा दिन खुद ब खुद शानदार बन जाता है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान और असरदार आसन, सिंपल एक्सरसाइजेस जो घर पर आसानी से हो जाए, और हेल्थ टिप्स जो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए ताकि आप फिट रहे, एक्टिव रहे और हमेशा खुश रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सुबह सवेरे में योग सेगमेंट। आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन यानी

एकाग्रता बढ़ाने वाले योग के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, स्ट्रेस, और ऐसे में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा सा योग कर लिया जाए तो आपका फोकस, मेमोरी और थिंकिंग पावर तीनों ही बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुबह सवेरे का योग सेगमेंट।

सबसे पहला है पद्मासन। ये ध्यान की मुद्रा है। इसे करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को उल्टी जांघ पर रखें, रीढ़ सीधी रखें और आंख बंद करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे मन शांत होता है और एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। अगला है ब्रह्मारी प्राणायाम। इसे करने के लिए आंखें बंद करें और कानों को हल्के से बंद करें। गहरी सांस लेकर ब्रह्म की आवाज के साथ छोड़ें। 5 से 7 बार इसे दोहराएं। इससे दिमाग को तुरंत शांत मिलता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है।

अगला है वृक्षासन। ये संतुलन का आसन है। इसे करने के लिए एक पैर पर खड़े हो जाएं, दूसरे पैर को जांग पर रखें, हाथों को ऊपर जोड़ लें। इसके फायदे हैं, शरीर का बैलेंस सुधरता है, फोकस और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए एक नाक से सांस लें, दूसरी से छोड़ें। 5 से 10 मिनट इसे दोहराएं। इसके फायदे हैं, दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाता है, सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होती है।

त्रातक, ये ज्ञान केंद्रित करने की एक क्रिया है। इसे करने के लिए सामने एक दीपक या बिंदु रखें, बिना पलक झपकाए उस पर ध्यान केंद्रित करें। 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें और आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसके फायदे हैं, कंसंट्रेशन पावर तेज होती है, आंखों और दिमाग दोनों को फायदा मिलता है। दोस्तों, एक छोटा सा टिप है, योग हमेशा सुबह करें, मोबाइल से दूरी बनाकर अभ्यास करें, रोज 15 से 20 मिनट का समय जरूर दें। याद रखिए, एकाग्रता कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे आप रोज के अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने मन को बनाए और भी पावरफुल। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक फोकस रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, सुबह सवेरे के इस भाग में आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत किशोर कुमार के आवाज में, फिल्म बेमिसाल से।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की ओर। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हमारे कान की देखभाल के बारे में, यानी ईयर केयर के बारे में। कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर का बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं विस्तार से कानों की देखभाल क्यों जरूरी है। सुनने की क्षमता बनाए रखने के लिए अगर हम कानों का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे हियरिंग पावर कम हो सकती है। इन्फेक्शन से बचाव, गंदगी, पानी या बैक्टीरिया के वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। और अगला है संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने के लिए। कान के अंदर का हिस्सा शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है, तो इन चीजों के लिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी मानी जाती है। और कानों की देखभाल के आसान और जरूरी टिप्स, सबसे पहला है कानों की सफाई सही तरीके से करें। कान को बाहर से साफ कपड़े से ही साफ करें। कॉटन बड्स, पीन या माचिस की तीली अंदर ना डालें, इससे कान का पर्दा यानी एयर ड्रम खराब हो सकता है। तेज आवाज से बचें, हेडफोन या ईयरफोन में बहुत तेज आवाज में गाने ना सुने और लंबे समय तक लगातार सुनने से बचें, इससे हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ता है। अगला है कानों को सूखा रखें, नहाने या तैराकी के बाद कानों में पानी ना रहने दें, हल्के से तौलिया से बाहर से सुखाएं, इससे फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है। दर्द या समस्या को नजरअंदाज ना करें। अगर कान में दर्द, खुजली, आवाज कम सुनाई दे या पानी पस आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खुद से दवा ना डालें, बिना डॉक्टर की सलाह के एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, गलत दवा नुकसान कर सकती है। सर्दी खांसी का सही इलाज करें। लंबे समय तक जुकाम रहने से इन्फेक्शन कान तक पहुंच सकता है। और अगला और अंतिम है प्राणायाम भी है फायदेमंद। अनुलोम विलोम, ब्रह्मारी प्राणायाम, इन सब प्राणायाम को आप कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कानों का फायदा मिलता है। कानों की सही देखभाल के कुछ फायदे हैं। सुनने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। संक्रमण और दर्द से बचाव। शरीर का संतुलन सही रहता है। ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। याद रखिए दोस्तों, कानों की सही देखभाल हमें हर आवाज को साफ और सुरीला सुनने में मदद करती है, चाहे वो संगीत हो या अपने अपनों की बातें। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपने कानों का खास ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म सागर से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नई सुबह की ताजगी, सुनहरी किरणों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और प्रस्तुत करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां। इसलिए हम हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और भरोसेमंद खबरें, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार और दिन भर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। देशव्यापी बैंक हड़ताल पर बड़ा अपडेट। आज से प्रस्तावित 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच रविवार रात बातचीत के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। पहले 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान की संभावना थी। भारत की पहली एलएनजी पावर ट्रेन की रेलवे परियोजना। गुजरात के साबरमती में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1542 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को हरी झंडी दी। इनमें भारत की पहली एलएनजी पावर ट्रेन, WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस सीट, कवच सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और साबरमती सरकेज रेलवे लाइन डबलिंग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे

का एआई बेस्ड प्रोजेक्ट दृष्टि, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने फ्राइट वैगन्स की सुरक्षा निगरानी के लिए प्रोजेक्ट दृष्टि नामक एआई आधारित प्रणाली शुरू की है। यह तकनीक मालगाड़ियों के वैगन डोर्स, लॉक्स और सील्स की निगरानी में मदद करेगी। पूर्वोत्तर के लिहाज से ये महत्वपूर्ण रेलवे टेक्नोलॉजी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में बारिश से 10 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत और 17 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। राज्य के 63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावनाएं जताई है। सिक्किम में भूस्खलन से कई घर प्रभावित। सिक्किम के एक गांव में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से कम 32 घर और 4 सरकारी क्वार्टर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात को देखते हुए गांव को रहने योग्य न माने जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी। नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद एनटीए के परिसरों में सीआईएसएफ की सुरक्षा तैनात करने का फैसला सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फिडेंशियल एरियाज की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर एक नजर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बरकरार। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिपिंग अभी भी गंभीर दबाव में है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने मैरीटाइम ट्रेड लेवल को सीवियर बनाए रखा है। हालांकि पिछले 72 घंटों में किसी कन्फर्म्ड अटैक या मेजर डिस्ट्रप्शन की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर करा रुख अपनाया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए कई शर्तें रखी है, जिनमें अमेरिका ब्लॉकेट हटाने और ईरानी एसेट्स को लेकर कुछ कदम शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच किसी समझौते की संभावना को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में 2 मास शूटिंग, लगभग 30 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका के 2 बड़े शहरों के आसपास हुई 2 अलग अलग मास शूटिंग घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। नेपाल में बाढ़ की त्रासदी, मृतकों की संख्या 1452। नेपाल में करीब 1 महीने पहले कई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद मृतकों की संख्या कम से कम 1452 तक पहुंच गई है, जबकि लगभग 5300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव अभियान जारी है और डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए कई शवों की पहचान की जा रही है। साउथ चाइना सी में चीन का सैन्य अभ्यास। चीन ने साउथ चाइना सी के विवादित सोल के आसपास नेवल और एयर एक्सरसाइज किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में समुद्री दावों और सुरक्षा को लेकर कई देशों के बीच तनाव बना हुआ है। दोस्तों, आइए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। एपीसीसी टीम टू विजिट एसयूएमपी साइट्स टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज, ब्लेजर्स कंसर्न। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को कहा कि पार्टी की 4 सदस्यों वाली एक टीम, जिसके मुख्य पार्टी अध्यक्ष बोसीराम सिराम होंगे, जमीनी हकीकत जानने के लिए सियांग और अपर सियांग जिलों में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की साइट्स का दौरा करेगी। एएपीडब्ल्यूएल रिकॉर्ड्स वार्म रिसेप्शन टू वांगशु ऑन हर रिटर्न फ्रॉम एशियन गेम्स। रविवार को एशिया खेलों से लौटने पर ऑल अरुणाचल प्रदेश वुशु एसोसिएशन ने वुशु एथलीट न्यामेन वांगशु को यहां एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। रीडिफाइनिंग बेसिक एजुकेशन आर डिग्रीज अंडर थ्रेट, मंडे म्यूजिंग में इस खबर को छापा है। शिक्षा एवं एक माध्यम है, इसका मकसद खुद ही से ही पता लगाना है। एक अनुमान से शुरुआती करें तो जो आज बुनियादी शिक्षा लगती है वो कल फ्री स्कूलिंग के लिए जरूरी शर्त बन जाएगी। चांगलांग से टिकाक होमस्टे रिसीव बेस्ट होमस्टे अवार्ड, शेरिंग वांगे
बेस्ट टूर ऑपरेटर। रविवार को आईसीआर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर गवर्नर केटी फरनाइक ने सालाना राज्य पर्यटन पुरस्कार दिए। मिया ओपन टूर्स एंड ट्रेवल्स की बेला टिका के टिकाक होमस्टे चांगलांग को बेस्ट होमस्टे का अवार्ड मिला, जबकि जीरो के सुचुसु होमस्टे और वेस्ट कमिंग के बॉमडिला एम्बेसी को प्रशंसा पुरस्कार मिले। स्टेट बीजेपी स्लैम कांग्रेस ओवर रिमार्क ऑन ईसीआई अर्ज रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल इकाई ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हालिया बयानों की आलोचना की। फोरम सीक जस्टिस फॉर जेन्युइनली अफेक्टेड टीचर्स। अरुणाचल जनजातीय अन्याय विरोधी मंच ने हालिया तबादले यक्तिकरण से छूत के लिए वास्तविक और दस्तावेजी आधार रखने वाले शिक्षकों के प्रति अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है। एचआरए एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर कंट्रोवर्सी सराउंडिंग एसआईआर। अरुणाचल के मानवाधिकार संगठन ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर चल रहे विवाद पर गंभीर चिंता जताई है। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज है विशाल ददलानी, श्रुति पाठक और एकॉन की आवाजों में फिल्म रा वंशी।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंपोर्टेनमेंट आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत कमाल खान के आवाज में फिल्म द डर्टी पिक्चर से।

श्रोताओ, इसी के साथ आज का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: Menang menang nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemane lema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Abaritola lako ba dungla achin ugumala donang tengnam loke so HIV si nyinga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loke bimpa linduku.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम सदाबहार के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ,
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ, तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी ईटानगर के आज के मौसम का हाल। दोस्तों, आज सुबह ईटानगर में मौसम

मुख्यतः बादलों से घिरा हुआ है और तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस है। आज दिन के दौरान बादल बने रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है। दिन में क्या होगा? दोपहर की ओर तापमान बढ़कर करीब 33 डिग्री तक जा सकता है, यानी बीच में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ रहने के बजाय बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। आज हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे दिन लगातार बारिश होगी, बल्कि मौसम में बदलाव के साथ कहीं हल्की बारिश और कहीं बादल बने रह सकते हैं। शाम होते होते तापमान नीचे आएगा और मौसम फिर से कुछ आरामदायक महसूस हो सकता है। बारिश की संभावना को देखते हुए बाहर निकलते समय छाता साथ रखना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज का सीधा साधा मौसम अपडेट। सुबह बादल, दिन में गर्म और उमस भरा मौसम, बीच बीच में हल्की बारिश भी हो सकती है और शाम को फिर अपेक्षाकृत सुहाना मौसम, यानी आज ईटानगर में मौसम का मिजाज रहेगा क्लाउडी वार्म और हल्की बारिश की संभावना। तो दोस्तों, आज के मौसम की जानकारी के बाद बढ़ते हैं आज के सदाबहार कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है गुलाम महमूद साहब का और बोल है कमाल अमरोही का, फिल्म पाकीजा का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी धुन शुरू होते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। अब जो गीत हम सुनने जा रहे हैं उसमें है प्यार की शरारत, लोक संगीत की मिठास और ढोलक तबले की वो मस्ती जो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। फिल्म सरगम का बेहद लोकप्रिय गीत दबली वाली, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बस एक एहसास से बन जाते हैं, और प्यार में अगर किसी का साथ मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। दोस्तों, अब सदाबहार में बारी है एक और ऐसी सदाबहार गीत की जिसमें मोहब्बत की खूबसूरत कशिश भी है और साथ निभाने का एक प्यारा सा वादा भी। आइए हम राज फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर के आवाज में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
1: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड दक्षिण

0: की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
2: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 30 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy.

श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग। दोस्तों, आज का ये सफर होने वाला है जानकारी, इतिहास और मधुर संगीत से भरपूर। सबसे पहले हम देखेंगे आज के टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में आज के दिन का इतिहास। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 28 सितंबर को गति भारत के इतिहास के नजरिए से सबसे पहले हम एक नजर देखते हैं। वर्ष 1827 भारतीय सेना की आर्टिलरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शुरुआत। 28 सितंबर वर्ष 1827 को 5वीं बॉम्बे माउंटेन बैटरी का स्थापना हुई थी। ऐसी ऐतिहासिक स्थापना की याद में भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी हर वर्ष 28 सितंबर को गनर्स डे मनाती है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैटरी ने स्थापना के बाद लगातार सेवा दी और इसी कारण 28 सितंबर को दिन आर्टिलरी रेजिमेंट के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1838 बहादुर शाह जफर बने दिल्ली के सम्राट। 28 सितंबर वर्ष 1838 को मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के निधन के बाद उनका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। वर्ष 1907 शहीदे आजम भगत सिंह का जन्म। 28 सितंबर वर्ष 1907 को भगत सिंह का जन्म बंगा लायलपुर जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत सरकार की सामग्री के अनुसार उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा संबंध था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह भी ब्रिटिश शासन के विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। वर्ष 1929 बाल विवाह के विरुद्ध ऐतिहासिक कानून पारित। 28 सितंबर वर्ष 1929 को ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पारित किया। इसे इसके प्रमुख प्रस्तावक हरविलास शारदा के नाम पर आमतौर पर शारदा एक्ट कहा गया। वर्ष 1929 को ही आज ही के दिन भारत के महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म। 28 सितंबर की तारीख संगीत प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है। 28 सितंबर वर्ष 1929 को इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। भारत सरकार के अनुसार उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक और रंगमंच से जुड़े कलाकार थे। लता जी ने महज 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म में के लिए गाना रिकॉर्ड किया और आगे चलकर भारतीय फिल्म संगीत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल हुई। उन्हें भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित अनेक सम्मान मिले। तो एक ही तारीख में भारत का भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी और लता मंगेशकर जैसी महान संगीत प्रतिभा दोनों की जन्मतिथि देती है। वर्ष 1942 उड़ीसा के एराम में स्वतंत्रता आंदोलन का रक्त रंजित अध्याय। 28 सितंबर वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उड़ीसा के एराम वर्तमान भद्रक क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना हुई। ओडिशा सरकार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार पुलिस गोलाबारी में 29 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास की ओर। वर्ष 1781 यॉर्कटाउन की घेराबंदी शुरू। 28 सितंबर वर्ष 1781 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने यॉर्कटाउन की घेराबंदी शुरू की। वर्ष 1924 पहली हवाई विश्व परिक्रमा पूरी हुई। 28 सितंबर वर्ष 1924 को अमेरिकी सेना की एक टीम ने हवाई जहाज से पहली सफल विश्व परिक्रमा पूरी की। 4 विमान अप्रैल 2000 फिर से सुनिए 1924 में इस यात्रा पर निकले थे और लगभग 175 दिनों बाद 3 विमान वापस सिएटल पहुंचे। उस दौर में पूरी पृथ्वी का हवाई मार्ग से चक्कर लगाना तकनीकी और मानवीय साहस की बड़ी उपलब्धि थी।
वर्ष 1961 यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का अंत, 28 सितंबर वर्ष 1961 को सीरिया में हुए सैन्य टक्कापल के बाद यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यानी मिस्र और सीरिया का राजनीतिक संघ प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। यह संघ 1958 में बना था और इसका नेतृत्व मिस्र के राष्ट्रपति गमल अब्देल नासिर के हाथों में किया गया था। तो दोस्तों, आज के टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ और कार्सन सगासिया ने। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के टुडेज डे स्पेशल पर। आज 28 सितंबर का तारीख पर सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वर्ल्ड रेबीज डे और भारत में शहीद भगत सिंह की जयंती। आज विश्व रेबीज दिवस है। WHO के अनुसार इसका उद्देश्य रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को खत्म करने के प्रयासों को मजबूत करना है। 28 सितंबर इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये लुईस पेस्टर की पुण्यतिथि है। पेस्टर ने रेबीज के खिलाफ पहला सफल टीका विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने या उसके लार के संपर्क से फैल सकती है। खासकर कुत्तों से होने वाले संक्रमण को रोकना इसके नियंत्रण में बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल का थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी मिलकर और मजबूत। WHO के अनुसार इस वर्ष की थीम इस बात पर जोर देती है कि रेबीज को खत्म करने के लिए समुदाय, पशु चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी का मिलकर काम करना जरूरी है। और आज भारत में शहीद भगत सिंह की जयंती है। वर्ष 1907 को भगत सिंह का जन्म आज के दिन हुआ था, इसलिए भारत में 28 सितंबर को उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज के इतिहास के पन्नों में बस इतना ही और आज के डे स्पेशल पर भी बस इतना ही। चलिए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के आवाजों में।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर जनसेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य और पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान भारत के युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टरों के जरिए बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
3: सभी 179 ट्रैकर्स की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित जिला में रेस्क्यू प्लान तैयार किए गए हैं। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन, वन विभाग, SDRF, पुलिस और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। मुख्य सचिव ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए युकाडा के माध्यम से पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 29, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, LOC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, when 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2000 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
4: Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. The centre has launched a project to build a national digital public infrastructure for the tourism sector, which will enable users to access a wide range of products and services on a shared digital space. The Ministry of Tourism has joined hands with the Open Network for Digital Commerce, ONDC, to build the National Digital Tourism Stack with a target to bring on board 23,000 tourism experiences and homestays and make them discoverable, trustable and bookable by the end of 2028. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association. In a social media post, AIBA said that the decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association, IBA, and the United Forum of Bank Unions, UFBU, last night on the issues related to the strike. The Election Commission of India has revised the schedule of ongoing Special Intensive Division 2026 in Delhi. According to Chief Electoral Officer of Delhi, the last date to file claims and objections will be the 30th of next month. Notice phase or disposal of claims and objections will be till the 30th of November. The final electoral roll will now be published on the 4th of December. Delhi CEO further informed that special camps were successfully organized at all polling stations across NCT of Delhi yesterday for enrollment of new voters through Form 6, and other electoral services were provided during the camps. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to former freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that with indomitable courage and valor, Bhagat Singh infused new energy into the freedom movement. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a 2-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Bharat Ratna Lata Mangeshkar on her birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that Lata Mangeshkar illuminated the name of India across the world with her divine singing talent. The Prime Minister added that Lata Mangeshkar not only adorned and enriched the country with her melodious notes, but also steadfastly encouraged every endeavour linked to the prosperity of India. In Asian Games, India will face Afghanistan in the second quarter-final of the men's cricket today at Korogi Sports Park in Nisin. The match will start at 10:30 a.m. Indian Standard Time. India advanced directly to the quarter-finals and aims to continue its winning streak. And that is the end of this news bulletin.

0: कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग प्वाइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ ना नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से, जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में सीडीआरआई की स्थापना को जन्म दिया, सीडीआरआई का जन्म हुआ। तो आप

0: मैं समझना चाहूंगी कि आखिर सीडीआरआई को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और सीडीआरआई का काम एक्चुअली में है क्या।
1: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाए जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
0: नॉर्मल लाइफ
1: नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उसे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
0: तो एक्सपेंसेस
1: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
0: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही जीएसडीएमए का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था जीएसडीएमए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो जीएसडीएमए की स्थापना हुई, जीएसडीएमए की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर जीएसडीएमए का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर जीएसडीएमए फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो अभी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और

0: राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लान्ड तरीका होता है। सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलियंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई, पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में। तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया, 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में है, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सके और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सके, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है कहीं बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती है, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती है। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, और वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहे, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई, और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
3: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था, तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो वहां पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था, तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था, और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना। तब मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को, उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारी जल क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में, तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोथी, अगर हम सीडीआरआई की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें सीडीआरआई का क्या रोल रहता है?
2: तो इनफैक्ट आज ही हम एनडीएमए के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात की है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की जरूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है, जो इस जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है, और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशन हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशन भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
3: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने इंडिया में की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं। जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं CDRI का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
2: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है एक्चुअली, अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब
1: हीट वेव
2: लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी यू नो एसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत, तो ये सब चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी, जब भूकंप आता है वो कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी
2: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज शुरू हो गई है वाइल्ड फायर, अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा काफी शहर में भी, तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा टेंशन हो रहा है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 degrees वार्मर ग्लोबली में, पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल उस सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो ये सब चीजें हो रही हैं बट इस पे काम भी होने लग गया है काफी।
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी SCO मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं और सारे, जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई, हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
2: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्णा जी भी इस पे आपके तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है, G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है और सेंडाय का एक टारगेट है, चार टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए ताकि

0: अगले जो 10 साल है उस पर किस टाइप से फोकस हुआ जाए उस पर हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
1: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है। अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफी कमी आई है और काफी नियंत्रण हमने किया है। जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन एयरफोर्स, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूंगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज्यादा हीट एक्शन प्लान्स है पूरे देश में। कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीजों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी और मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक बेहतर नियंत्रण रह सके।
2: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी. कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इंपैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पे

0: अभी क्या कोई काम हो रहा है?
1: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से, साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज्यादा कर सकें ताकि ये सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्न कर सकें।
2: डॉक्टर, हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई है ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बट बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को अब किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। सो उस पर अटेंशन हमने फोकस ज्यादा किया है स्कूल्स पे, सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज उसको कर रहा है उसको भी इन चीजों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
0: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
1: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा की 11वीं संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित जनसेवा से देश सेवा का 11वां श्रृंखला। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक और शान के आवाजों में फिल्म चुरा लिया है तुमने से।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
2: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है

बस मैसेज में लिख भेजिए किस फिल्म का गीत है, किस सिंगर की आवाज में है, अपने नाम और आप कहाँ से सुन रहे हैं। और सबसे खास, अगर ये गीत किसी अपने को डेडिकेट करना है तो उनका नाम भी जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों हर फरमाइश के पीछे छिपी होती है एक कहानी। किसी गीत में दोस्ती है, किसी में प्यार, किसी में परिवार की यादें हैं, और किसी गीत में धूर बहते किसी अपने लिए ढेर सारी बातें। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला मैसेज लेते हैं। ये पहला मैसेज हमें भेजा है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, जो हमसे जुड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। आप सभी का अरुण एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की पहली फरमाइश है एकदम एनर्जेटिक और फुल ऑन मस्ती वाला गीत हो जाएगी बल्ले बल्ले, जिसे अपने दमदार आवाज में गाया है डलर मेहंदी ने। अब जब पहली ही फरमाइश हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो समझ लीजिए आज की म्यूजिकल महफिल की शुरुआत होने वाली है पूरे जोश और धमाल के साथ। तो शिवा, प्रेम, कपिल, शिवान, संगीता, लिपि और दीपाली जी, आपकी इस शानदार फरमाइश ने रेडियो ऑन डिमांड का माहौल बना दिया है एकदम लेवली।

और दोस्तों अगला मैसेज आया है हमारे प्यारे लिसनर अमाल बसुमतारी जी का जो हमसे जुड़ रहे हैं रंगाफारा सोनितपुर असम से। अमाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज अमाल जी ने अपनी फरमाइश में चुना है फिल्म वारिस का बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत मेरे प्यार की उम्र हो, जिसे अपनी आवाज दी है मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर ने। और इस प्यारे इस गीत को अमाल जी ने डेडिकेट किया है अपने खास लोगों के नाम जोगेंद्र बीमल अस्मिता अंजलि सुनीता कविता मनोई बिमल रूपाली पूजा प्रिया सुजीता रमेश निहारका कंचन और कल्पना जी को। तो जिन जिन दोस्तों के नाम अमल जी ने ये खूबसूरत डेडिकेशन भेजी है आप सभी के लिए ये गीत लेकर आए हैं देर सारा अपनापन और एक प्यारा सा म्यूजिकल एहसास। कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि अपनेपन और रिश्तों की खूबसूरत यादें भी साथ लेकर आता है और अमल जी की ये फरमाइश भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए सुनते हैं अमल जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद कार्यक्रम के अगले मैसेज के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं,
1: पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है सारिहा जान असम से, और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगटीपी और दोरम किरी रोंगपी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण FM पर। दोस्तों, आज की ये फरमाइश कुछ खास है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत के महान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को, जिनका जन्म 28 सितंबर यानी आज के दिन वर्ष 1929 को हुआ था। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, और इसी खास मौके पर जोगिंद्र

और दोस्तों अगला मैसेज आया है हमारे लिस्नर बिमल बसुमतारी जी का जो हमसे जुड़ रहे हैं मैसाखी सपोरी डिस्ट्रिक्ट धेमाजिया साम से। बिमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज बिमल जी ने फरमाइश की है फिल्म जान का खूबसूरत और एवरग्रीन गीत जान ओ मेरी जान, और इस प्यारे से गीत को बिमल जी ने डेडिकेट किया है अपने खास दोस्तों और अपने फिल्म से जुड़े सभी लोगों के नाम, अमाल गागे, राबा, रमेश, रूनू, लक्की, रोको, बाइकुन, जोगेंद्र, देवासी, सीतेंद्र।

वीरेन चुबा के कसीम और सुनीता जी को। साथ ही विमल जी ने ये खास डेडिकेशन है हमारे सभी आरजेस और रेगुलर लिसनर्स के लिए भी। तो दोस्तों, नाम चाहे कितने भी हो लेकिन भावना एक ही है, दोस्ती, अपनापन और अपने लोगों के साथ म्यूजिक शेयर करने की खुशी। तो विमल जी की तरफ से उनके सभी खास दोस्तों और हमारे सभी रेगुलर लिसनर्स के लिए पेश है ये प्यारा सा गीत। उम्मीद है ये म्यूजिकल डेडिकेशन आप सभी के दिन में थोड़ी और मिठास जरूर घोल देगी।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है हितेंद्र दास जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं असम से। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों, आज हितेंद्र जी ने फरमाइश की है फिल्म द डर्टी पिक्चर का बेहद कैची और फुल ऑन एंटरटेनिंग शो उलाला, जिसे अपनी आवाज दी है श्रेया घोषाल और बाप्पी लाहिरी ने। अब जब फरमाइश हो उलाला, तो समझ लीजिए हितेंद्र जी, आज के रेडियो ऑन डिमांड में थोड़ा सा मस्ती वाला तड़का लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो हितेंद्र जी, आपकी इस एनर्जेटिक फरमाइश को करते हैं शामिल हमारे म्यूजिकल महफिल में। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और तैयार हो जाइए इस सुपरहिट ट्रैक की कैची बीट पर झूमने के लिए। लीजिए दोस्तों, फेस है हितेंद्र जी के पसंद पर ऊ लाला।

0: दोस्तों रेडियो दीवान में अगला मैसेज आया है हमारे प्यारे लिसनर ज्योति सुरेन जी का जो हमसे जुड़ रही है हेलम असम से। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज ज्योति जी ने फरमाइश की है फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी का बेहद फैफी और एनर्जेटिक सॉन्ग इन द नाइट नो कंट्रोल जिसे अपनी आवाज दी है सुमित्रा अय्यर ने।
1: Even naughty girls need love, Hannah.

0: दोस्तों अगला मैसेज आया है हमारे लिस्नर कागिन एन सुतार जी का जो हमसे जुड़ रहे हैं बालीजुरी सोनितपुर असम से। कागिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों कागिन जी ने अपनी फरमाइश में चुना है बेहद पॉपुलर और फुल ऑन मस्ती वाला गीत कई के पान बनारस वाला। लेकिन दोस्तों ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है, दोन नाम से दो फिल्म है, एक पुरानी और एक नई। कागिन जी आपने मैसेज में ये नहीं बताया कि पुरानी धोन या नए वाली धोन आपने स्पष्ट नहीं किया है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको नए धोन यानी 2006 वाली फिल्म धोन से ये सॉन्ग सुनाया जाए। और इस वर्जन में गाने को अपनी आवाज दी है उदित नारायण और इस स्क्रीन पर परफॉर्म किया है शाहरुख खान ने। उम्मीद है कागिन जी आपको हमारी ये म्यूजिकल चॉइस पसंद आएगी।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे, बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

और दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगला और अंतिम मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें भेजा है लकी हेम्ब्रम और बेदाती बीमारी जी का, जो हमसे जुड़ रहे हैं आसाम से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। दोस्तों आज की फरमाइश है फिल्म जमीन का खूबसूरत और सोलफुल गीत सरजमीन, जिसे अपनी आवाज दी है के और शान ने। और इस खूबसूरत गीत को लकी हेम्ब्रम और वेदाती जी ने डेडिकेट किया है अरुण एफएम के सभी लिसनर्स के नाम। तो अरुण एफएम परिवार के हर लिसनर के लिए, चाहे आप घर पर हो, रास्ते में हो, काम पर हो, या कहीं दूर से हमें सुन रहे हो, ये प्यारी सी म्यूजिकल डेडिकेशन आप सभी के नाम।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का यह अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहले प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे बामिन सुम्पी जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिनशवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, or LOC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी
2: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around

प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। किसी ने बहुत सही कहा है दोस्तों, शोक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर, और हमारे सारे लिसनर्स को मैं ये बता दूं कि आप हमारा कार्यक्रम सुनकर तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें मैसेजेस देना चाहते हैं, तो वो भी आप बेशक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9436887808 पर आप हमें अपने मैसेजेस भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, या फिर आपके पास कोई सुझाव हो हमारे कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म मिले हैं और अब अरुण एफएम पर वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडी सरन एफएम 103.1 MHz पर। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुँचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारतीय ईशा सिंह ने आज आईटी नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईटी नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Vatsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged countrymen to make sure to set aside time for the census. Recalling the appeal from yesterday's Mann Ki Baat address, Mr. Modi said, participating in the census is a national duty for all citizens. He added that participation helps in creating an accurate picture of the country's future. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh met with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee. Defence Ministry said the discussion centered around the evolving India-US comprehensive global strategic partnership, with special emphasis on defence, industrial and technological cooperation. The United Forum of Bank Unions, UFBU, has announced that the proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the All India Bank Employees Association said this decision was taken after a meeting held between the IBA and the UFBU, the umbrella body of seven bank unions, last night on the issues related to the strike. Earlier, a three-day nationwide strike was called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in the public sector banks from the 28th to the 30th of September. They had called a strike in support of two principal demands: implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to freedom fighter Shaheed Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said, "With indomitable courage and valour, Bhagat Singh infused new energy into the freedom movement." The Prime Minister added that Bhagat Singh's spirit of sacrificing everything for the honour of the nation is a symbol of the courage and resolve of India's youth. In Uttarakhand, the Char Dham Yatra has resumed after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swarup said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Char Dham Yatra had been suspended from the afternoon of September the 26th until September 27th in view of the weather forecast and safety of pilgrims. Meanwhile, repair and strengthening work is underway on the Kedarnath Dham trekking route near Chirbasa. The route was damaged by debris and boulders following heavy rainfall near Chirbasa, about 2.5 kilometers above Gaurikund. Movement through this section is currently completely closed. At the Asian Games 2026 in Japan, India's Isha Singh won the silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78-kilogram Kurash event, defeating South Korea's Lim Gawam 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. in women's boxing event, Indian Olympic medalist Lovlina Borgohain secured a medal in the 75-kilogram category with a 5-0 quarterfinal win over South Korea's Seong Soo-hyun. The Indian stock market witnessed a sharp decline during forenoon trade today. The Sensex plunged 963 points to 72,932, while the Nifty tanked 306 points to 22,834 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता अरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का यानी कि नॉन फिल्म सॉन्ग्स का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों की नहीं बल्कि कुछ यादगार एल्बम्स के गीतों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हमारे पहले गीत के साथ।

तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। श्रोतो, ये कोई दो प्रेमियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक खूबसूरत सा रिश्ता आत्मा और परमात्मा के बीच में। जी हाँ श्रोतो, एक जोगन और उसके भगवान के बीच का ये खूबसूरत सा रिश्ता इसे गाने में प्रेजेंट किया है कैलाश खेर ने अपने गाने सैया में। तो आइए आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग। तो आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाते हैं। श्रेया घोषाल के द्वारा गाया ये गीत उनके शुरुआती समय में उन्होंने एल्बम रिलीज की थी जिसका नाम था तेरा मेरा प्यार। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स और आप हमारे कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, यानी कि गीत माला की ओर।

कार्यक्रम गीत माला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी को याद एक बार फिर बता दूं कि ये कार्यक्रम है खास करके हमारे वीर जवानों के लिए, हमारे सोल्जर्स के लिए। उनको डेडिकेटेड है ये कार्यक्रम और उनके लिए, उनके मनोरंजन के लिए ढेर सारे गाने हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हमारे पहले गीत से।

हमारे वीर जवान, हमारे सोल्जर्स जब आर्मी के लिए आगे आते हैं, अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने आगे निकलते हैं, तो वो अपने घर परिवार दोस्तों सभी को पीछे छोड़कर आते हैं। लेकिन जब ऐसे ही लाखों नौजवान एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं, तो उनके बीच एक अटूट बंधन बन जाता है, दोस्ती का, भाईचारे का, और एक दूसरे के साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे दुखों को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर, और हालाते चाहे जितनी भी खराब हो, जितनी भी मुश्किलें आए, उनकी मस्ती नहीं रुकती है। तो आयुष होता इसी बात पे आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
7: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
6: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
7: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
6: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
7: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
8: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
9: Get attractive offers up to ₹67,500.
10: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे वीर जवानों का कार्यक्रम गीत माला, और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने

के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक रखकर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Narendra Modi paid tributes to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Bhagat Singh's spirit of sacrificing everything for the nation's honour stands as a timeless symbol of the courage and resolve of India's youth. In Uttarakhand, the Char Dham Yatra has resumed after improvement in weather conditions today. Garhwal Commissioner Anand Swarup said necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Char Dham Yatra had been suspended from the afternoon of the day before yesterday until yesterday in view of the weather forecast and the safety of pilgrims. At the 2026 Asian Games in Japan, India's Isha Singh won the silver medal today in the women's 25-meter pistol individual competition. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex plunged 945 points to 72,952, while the Nifty tanked 299 points to 22,842 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आप हमारे साथ बने हुए हैं RRFM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, अब वक्त हो चला है आप सभी के फरमाइशों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
2: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
2: जी लोकेंद्र जी, कहिए कैसे हो आप?
3: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल
2: जी जी जी, इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए।
3: जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ
3: जी। तो सर जी, आज जो मैं गीत लेकर आया हूँ, फिल्म का गाना है वो डिस्को डांसर।
2: ओके जी।
3: हाँ, उसमें गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार।
2: ओके जी जी जी जी।
3: और ये डिस्को डांसर फिल्म में जो म्यूजिक है वो है बप्पी दादा का।
2: जी बप्पी लाहिरी जी का। हाँ जी।
3: हाँ, तो ये डिस्को डांसर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जो बप्पी दादा ने जो संगीत दिया है वो इस दुनिया में तो नहीं है बप्पी दादा, पर वो उनके संगीत को आज भी हम सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला डिस्को वो ही लेकर आए थे फिल्म संगीत की दुनिया के अंदर।
2: जी जी बिल्कुल सही कहा, बप्पी दा का जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हमेशा अमर रहेगा।
3: बिल्कुल जी। सर जी,
2: तो किन लोगों के साथ इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आप?
3: यह गीत सबसे पहले तो आकाशवाणी के लिए रहेगा, और हमारे शारदा प्रसाद जी है, भगवान सिंह जी है, प्रेम सिंह जी है, श्रीपाल गोयल जी है, उदयलाल टेलर साहब जी है, दिलीप पाहुजा जी है, सुनील झा जी है, और राम बाबू मालवीय भोपाल से हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, और हमारे मित्र हैं गौतम जी हैं, उनके लिए भी यह गीत रहेगा, वो आकाशवाणी के लिए यह गीत रहेगा कि याद आ रहा है तेरा प्यार।
2: तेरा प्यार, क्या बात है। जी जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना डिस्को डांसर फिल्म से।

0: सर
1: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, ठीक हूँ
0: आपका ईटानगर परिवार?
1: जी। ईटानगर परिवार सब बहुत ही बढ़िया।
0: अभी मौसम का क्या हाल है ईटानगर में?
1: मौसम अभी बढ़िया है।
0: ठीक है,
1: अच्छा, जी, बढ़िया
0: मौसम
1: मौसम
0: बहुत
1: है।
0: सुहाना है।
1: ओके जी, सुहाना मौसम का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए
0: जी,
1: जी। तो इस सुहाने मौसम में हम आपको कौन सा फिल्म का गीत सुनाए तुकाराम जी?
0: फिल्म का नाम है राजा और रंक,
1: ओके, राजा और रंग।
0: और गीत बोले संग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया।
1: मस्ताना मौसम आ गया, क्या बात है। जी जी जी हाँ जी जी
0: मौसम मस्ताना है तो।
1: हाँ, गाना भी मस्ताना ही चुना है आपने
0: जी,
1: जी। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस मस्ताने गीत को?
0: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे मित्र है गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, धीरज भाई रवारी जी, सुनील दास जी, दिलीप पहुजा जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, आर्यन पाटिल जी, पीएसआई शेट्टी जी, उत्तन पवार जी,
1: जी
0: रमेश जाधव जी, विजय पाटिल सारूकर जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
1: ओके, इन साथियों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को
0: रंग
1: जी। ओके, वो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ
0: जी। अनूप जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है जी। और कुछ नाम दिल से मिटाए नहीं चाहते, कोई दोस्तों के चेहरे भुलाए नहीं चाहते। मुलाकात हो और ना हो, लेकिन ए मेरे दोस्त, दोस्ती के चिराग बुझाए नहीं जाते, है ना
0: दोस्ती के चिराग बुझाए नहीं जाते। जी जी जी क्या बात
1: जी।
0: है, बहुत।
1: बहुत तो आज एक गाने का मेरा फरमाइश है। फिल्म
0: जी हाँ जी।
1: का नाम है लम्हे,
0: लम्हे,
1: और
0: ओके।
1: गाने का बोले से, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे, ऐसे करके गाने हैं।
0: ओके जी
1: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: जी जरूर जरूर। हाँ जी
1: पहले है हमारे दोस्त थे बोके बागेरा जी, और
0: धन्यवाद
1: मैडम नूरी मैडम के लिए,
0: जी धन्यवाद।
1: और लुकेटी फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, श्रीकांत जोशी जी है, अमर सिंह साहू जी है, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, और है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, उसका नाम देवजीत दास, और बापन आचार्य, और हमारे

0: धर्मपत्नी सुपमा भट्टाचार्य जी के लिए।
1: ओके
0: तो चलिए दोस्त, बातचीत को यही पे विराम देता हूँ और फिर से आपको शुक्रिया और शिव के आशीर्वाद आपके पर और हमारे दोस्तों के पर मंगलाते रहे, ये मेरा प्रार्थना।
1: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिए भी आपने प्रार्थना की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: परम आदरणीय वागरा साहब को शादा सुप्रीम प्यार है नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको, और कॉल करने के लिए बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से हमारे बहुत अच्छे दोस्त ओगी वागरा साहब से। सर आप कैसे हैं?
0: जी शारदा प्रसाद जी, बहुत ही बढ़िया हूँ मैं, और आशा करता हूँ आप भी बहुत ही अच्छे होंगे।
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और रेडियो सुनना तो मेरा शौक है।
0: जी
1: आप लोगों से वार्तालाप करके जो खुशी प्रसन्नता आनंद की अनुभूति करता हूँ वो तो अद्वितीय है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन हम महसूस अवश्य कर सकते हैं आपकी तरह हम भी अच्छे हैं स्वस्थ हैं।
0: शारदा प्रसाद जी, आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं।
1: स्वागत है।
0: जी हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सफर रेडियो में कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, थोड़ी सी जानकारी दे
1: मनोहर
0: दीजिए।
1: मैं तो रेडियो बहुत ही बचपन से सुनता था, लेकिन इतना शौक नहीं था क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम रेडियो खरीद सकें। और फिर धीरे धीरे हमारे बड़े भैया ने 1973 में एक रेडियो खरीदा था मर्सी का, उसको हम लोगों को छूने नहीं देते थे, जो वो चलाते थे हम कभी कभी सुन लेते थे। लेकिन
0: अच्छा जी,
1: क्या हुआ कि 1993 के बाद जो मेरा शौक हुआ 1995 में मेरी धर्म पत्नी ने एक फ्लिप का रेडियो ले आके दिया
0: अच्छा
1: मुझे,
0: जी,
1: और उस रेडियो से फिर मेरा शौक ऐसा हो गया कि मैं उस वक्त तो सिर्फ विविध भारती और मीडियम वेव भी चलते थे तो लोकल स्टेशन विविध भारती को सुनते रहता था।
0: अच्छा
1: लेकिन जब मैं मथुरा में आया 2015 में तो आकाशवाणी मथुरा वृंदावन को सुन रहे थे, और सुनते सुनते 2017 मेरी एक ऐसी इच्छा हुई कि हम भी क्यों ना आकाशवाणी में फोन लगाएं और अपनी कुछ फरमाइशें करें और तो बात करें, बताओ तो अपनी बात पहुंचाएं। तो सन 2017 में यही फिर मैं फोन लगाना शुरू कर दिया और फोन लगाते रहा, लोगों से बातचीत करते रहा, और फिर हमारे कुछ और रेडियो श्रोता मित्र हमसे जुड़े और लोकेन वर्मा और स्वर्गीय सेवाराम माने ये सब जो हमारे संपर्क में आए और बहुत सारे केंद्रों की जानकारी दी, और इस तरह से हम अनेकों आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो स्टेशन से जुड़ते चले गए। और बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन भर रेडियो सुनते हुए, हमारा समय कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना सूचना शिक्षा मदद भरपूर कार्यक्रम आते हैं और एक से एक जानकारियां दी जाती है, आप लोगों से इतना नेह स्नेह प्रेम मिलता है वो बहुत ही चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करता है।
0: क्या बात है शारदा प्रसाद जी। और पहला कॉल आपने कौन सा स्टेशन में किया था, याद है कुछ?
1: आकाशवाणी मथुरा वृंदावन।
0: अच्छा, और कौन से गीत की फरमाइश की थी?
1: गीत की फरमाइश उस वक्त हमने किया था, फिल्म का नाम था शेहरा,
0: ओके,
1: और लता जी की आवाज में पंख होते तो उड़ आती रे।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: और मानव बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब मैंने फरमाइश की तो आदरणीय हमारे देवराज कृष्ण दीक्षित जी आरजे थे और
0: अच्छा जी,
1: अभी भी वो आरजे हैं मथुरा वृंदावन में,
0: ओके,
1: और उनसे बात करते करते मैं एड़ी से चोरी तक पसीने से तरबतर हो गया, इतनी घबराहट
0: जी जी जी
1: मैं हो
0: जी
1: गया कि
0: ओके,
1: पहली बार बात की तो साहब मेरे दो फोन लगा था मैंने काट दिया, मैंने कहा क्या बात करूंगा। इसके
0: अच्छा
1: बाद फिर तीसरी बार मैंने साहस और हिम्मत करके बातचीत शुरू कर दी, लेकिन बातचीत करते करते जो मैं हैरान हुआ,
0: ओके
1: मैं जानता हूँ कि मैं एड़ी से चोरी तक पसीने से तरबतर हो गया, हालांकि थोड़ी थोड़ी ठंड का वातावरण था।
0: अच्छा जी, पहला कॉल में तो घबराहट होती ही है जी।
1: जी
0: तो चलिए, आज आप कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आकाशवाणी ईटानगर पे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत है, फिल्म का नाम है झुमरू, ये चांदनी सुहानी ऐसा करके गीत है।
0: अच्छा जी, हाँ जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इसकी को?
1: इसमें शामिल करता हूँ बाबरा साहब को सादर समर्पित करता हूँ,
0: धन्यवाद जी।
1: और हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं सर श्री लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव हैं, अविनाश जी, आशुतोष जी हैं, राकेश कुमार जी, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, पंछी राम जी हैं, और पूरन वर्मा है, साथ में गोल्डी हैं और अर्जुन प्रधान जी हैं, केशव प्रसाद शर्मा हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, इन सभी दोस्तों के साथ साथ में चौधरी महेंद्र सिंह राजूलवानिया को मैं याद करता हूँ इस गीत के साथ में।
0: जी तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आभार, मंगलमय हो, सदा नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश
0: जी। रानू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। आपके क्या हाल चाल है?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी जी
0: ओके।
1: और मुझे ना एक गाना सुनना है, मूवी का नाम है इश्क विश्क।
0: ओके।
1: कार्तिक आर्यन वाली मूवी है, उसी
0: अच्छा।
1: में एक सॉन्ग है सोनी सोनी।
0: ओके
1: ओके
0: जी, तो रानू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर, मैं रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी।
0: जी अमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: जी मैं तो अच्छा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं भी घर पे बैठ के प्रोग्राम सुन रहा हूँ अभी।
0: अच्छा, आज आपने सुना अरुण एफएम
1: रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम सुन रहे थे?
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: और
1: अंदाज फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: अंदाज?
1: हाँ
0: ओके, गाने के बोल।
1: ये अक्षय कुमार वाला अंदाज है, इसमें गाने के बोल रहेगा। कितना पागल दिल है, कैसे ये मुश्किल है, बेवजह किसी को इंतजार करे।
0: अरे वाह अमल जी, आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं जी।
1: लेकिन ये कुमार सानू वाला गाना को मैंने रेडियो ऑन डिमांड पे कल या परसों डेडिकेट किया है, और फीमेल वाला गाना अलका याग्निक जी की आवाज में सुनना है अभी।
0: अच्छा, इसी गाने को अलका याग्निक की आवाज में?
1: हाँ,
0: ओके ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
1: और दोस्तों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
0: हाँ जी,
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और नूरी मैम को, आरजे जूनियर को, आरजे करगे को, और होलेराम ब्रह्मा को, और हमारे आरजे, बहुत सारे आरजे होते हैं ओरन एफ एम के।
0: जी जी, हाँ जी।
1: का नाम मैं भूल गया हूँ, सभी आरजे को और पूरे ओरन एफ एम के इंजीनियरों को भी डेडिकेट कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त रहेगा भाईकोन मुंडा, बिमोल बसुमतारी, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाची लवण्य पात्रो, और सौरभ द्वारा, और नीरज पोल द्वारा, गागी राभा, और पुतुल बरुआ, और रहेगा हमारा देवाशीष हजूरिका, हितेंद्र दास, और प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार, और त्रिपुरा से है आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, अविनाश तेली, और उधर भगवान सिंह परमार रहेगा, रमेश प्रजापति, और हमारा पुष्कर नाथ शर्मा भद्रवा से, जम्मू कश्मीर से, और भद्रवा से रहेगा पुरुषोत्तम कुमार, और राकेश, और गोल्डी, सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को?
1: जी,
0: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हमारा चोराडियो सुनारी असम का एक दोस्त था, उनका नाम हर रोज भूल जाता है, जिसका
0: अच्छा,
1: नाम है सोनजोई मुंडा, उसको
0: अच्छा,
1: भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, जरूर उनको भी सुनाएंगे। तो अमल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, हेलो फरमाइश
1: जी। सर मैं धेमाजी मिसाकी सबर मुल्क सबर कोई सर।
0: ओके बिमोल दा कॉल करा कने बहुत बहुत धन्यवाद। आजी को के कुंत फिल्म गाना आपने हुनिबो?
1: अजी सर मु हुनाइ दिबो क्या कहनार क्या कहना इतु गान तो हुनाइ दिले हुबो।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग है आपने हुनिबो?
1: होय होय मैं यार लोग रे एकदम नाम को भी सर।
0: ओके ओके हां हां हां।
1: हमार सबसे पहले से अमोल बसुमतारी, फाइकन मुंडा, रमेश पात्र, लाखी, देवाशीष हजारिका, उपेन्द्र दास और आसे रमेश प्रजापति, राकेश गोल्डी, पूरण वर्मा, शिवा लोहार, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सुसोदिया और जिमान शुनी आसे सबको
0: শুনাব আপনি না? ওকে থ্যাংক ইউ মোক ডেডিকেট করার কারণে। তো বিমল দা শুনো আপনার পছন্দের গানা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार। और कहिए, कैसे हैं आप
1: जी। मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो हो जाए परिचय
1: जी। मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ
0: जी। अर्जुन
1: अभी,
0: प्रधान जी
1: तो जानते होंगे
0: जी हमारे प्रिय श्रोता, सभी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो
1: जी
0: बताना जरूरी होता है ना
1: जी
0: जी। जी
1: परिचय
0: जी
1: देना
0: हाँ जी,
1: पड़ता है ना
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी।
0: तो अर्जुन जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं
1: सुना दीजिएगा मोरा प्रेम से टिपू टिपू बरसा पानी
0: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी। सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी, और पूरे ईटानगर परिवार पर डेडिकेटेड
0: जी
1: है। और हम मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौरदास लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कोठारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
0: जी।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए
0: सभी को
1: डेडिकेट है
0: आप
1: मेरे
0: जी
1: तरफ
0: सुनाना चाहते हैं। बहुत
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर। जी
1: सर, क्या हाल है सर?
0: जी मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी यहाँ का मौसम तो इस समय गर्मी बहुत है जी।
0: अच्छा जी,
1: हाँ जी, पंजाब में बहुत गर्मी है।
0: अच्छा जी, आप पंजाब से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: हाँ जी, हाँ जी, पंजाब
0: ओके,
1: से मैं सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: अच्छा सोनू जी, ओके जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद आपने हमें याद किया।
1: जी, हम तो ट्राई करते रहते हैं मगर ऐसा
0: अच्छा
1: हो नहीं लगता।
0: ओके, चलिए आज लग गया, बातें करते हैं
1: जी
0: जी। तो आज कहिए सोनू जी, कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: मुझे आपने गाना सुनाना है जी, नमक हलाल मूवी का।
0: ओके
1: उसमें गाना है जी, पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी।
0: ओके, पग घुंगुरू, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है जी।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
1: ये हमारे बहुत अच्छे जो मित्र है जी, हमारे जलंधर से पॉल जी हैं, लुकिंदर वर्मा जी हैं और दीपक जाधव जी हैं, तुकाराम जी हैं, राम शरण विश्वकर्मा जी हैं, सुनील झा जी हैं, रजिंद्र गंगवार जी हैं और स्वर्ण सिंह जी हमारे मोगा से, वो भी बहुत ट्राई कर रहे थे, आपका फोन ही
0: अच्छा
1: लगा।
0: ओके जी,
1: हाँ जी,
0: तो इन
1: तो
0: सभी
1: इनको डेडिकेट है जी।
0: ओके, तो सोनू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं।

आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर।

0: हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर। नमस्ते, मैं
0: नमस्ते
1: जवाहरलाल बर्मन बोल रहा हूँ कछार जिला से।
0: जी। जवाहरलाल जी कहाँ गायब हो गए थे आप? बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया है।
1: नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, काफी दिनों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के दिन में,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: इतना कोशिश करता हूँ मेरा फोन नहीं लगता, लेकिन मैं हमेशा बोके बगरा जी को याद करता हूँ
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: हमेशा हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुनता हूँ,
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: अच्छा
1: आपका सुरीली आवाज और आपका मीठी मीठी बातें हम सबको प्रेरणा देते हैं।
0: क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहरलाल जी।
1: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
0: इसी तरह से प्यार
1: तो
0: बनाए रखिए हमारे साथ।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ जी। तो आज
1: तो
0: कहिए
1: आज
0: कौन सा फिल्म का
1: जी
0: गाना
1: आज
0: आप सुना?
1: मुझे आज एक गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी।
1: 1977 में रिलीज हुआ अदालत फिल्म से, अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह जी ने अभिनय किया है वो गाना। लता जी और मोहम्मद रफी जी के जुगल सर में सुना दीजिए।
0: ओके।

0: इस गाना को माध्यम से मैं आकाशवाणी ईटानगर के हमेशा याद करता हूँ सर।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है जी।
0: ये
1: और
0: गाना मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। पहले तो आपके
1: बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद
0: प्रेम जी चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, भाई अविनाश है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए।
1: ओके। तो जवाहरलाल जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे थे आप सभी के फरमाइशों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और आप बने हुए हैं हमारे साथ रन FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता वरुण एफएम पर बाकी सारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500.
5: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
10: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
11: बन गया बजट?
10: हाँ,
11: 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले
11: ना,
10: पिछले महीने तो ली थी।
11: एक और
10: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
11: बढ़िया, जाओ भाई।
8: RBI कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
10: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
11: बन गया बजट?
10: हाँ,
11: 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले
11: ना,
10: पिछले महीने तो ली थी।
11: एक और
10: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
11: बढ़िया, जाओ भाई।
8: RBI कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोता बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने की सरकार के संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश

0: दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
2: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
0: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
5: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
5: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि

0: के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। और आप इन सारे कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता, अब आपको लेकर चलते हैं हम हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, यानी कि कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s की ओर। श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे 90s के दौर के सबसे सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दमदार कुछ डांस नंबर्स को, जिन्हें सुनकर आप चाहे कहीं भी हो आपके कदम थिरकने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं 90s के कुछ यादगार गीतों को, जो सही मायने में हिट्स ऑफ 90s है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं और भी कई बेहतरीन गानों को।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पूरा।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप बारी बारी से सुनेंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: दिस इज प्रिया बादू। टुडेज हेडलाइंस आर: इंडिया मार्क्स 10th एनिवर्सरी ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान. President Murmu interacts with students from Sikkim and Arunachal Pradesh. President urges students to dream big, pursue their goals with determination and contribute to the progress and development of the nation. Prime Minister Narendra Modi pays tribute to freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary. In Arunachal Pradesh, TRIMS Naharlagan successfully performs Ted's first ever renal transplant in collaboration with Delhi's Sir Gangaram Hospital. Chief Minister Pema Khandu hails the doctors, nurses, technicians for this historic achievement. Sender two dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan says governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. 60-member Indian Armed Forces contingents depart for Oskemen in Kazakhstan to participate in the 9th edition of the India-Kazakhstan Joint Military Exercise, Kazind 2026. United Forum of Bank Unions announces 3-day nationwide bank strike deferred. National Disaster Management Authority observes 22nd Formation Day. The theme for this year's Formation Day is Risk Reduction in Action. Center launches project to build a national digital public infrastructure for the tourism sector, which will enable users to access a wide range of products and services on a shared digital space. In Asian Games, India's Ansi Sojan Addapalli wins silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Currently, India stands at 12th position in medal tally with a total of 37 medals, including 4 gold, 16 silver and 17 bronze medals. That is all in this news headlines. Namaskar.
4: Ratonja Akashwani Tanagar, Dibrugarh. Rato Bajik Samsamna Gardening and Tamin Lai, Director Mongrin Katoki Siladong Pulning at Tokamala Kuntonti Kalingachining. Rading in Indian one. 10th anniversary of surgical strike demonstrate kanai kanai kan boyo khat mata chalme tawon gungli man ta on king phamodi government man show counter terrorist operation san mi hi wang thul la wan su khrem na chalme tinang hera to an surgical strike wan to online timin lai talmong gring talmonan mara ku kata chalme to an man rangwe king pha indian army uri le kem le ngim ta kep to Hateresun ka mingim talo bombsin pat nega King Indian Army nga kyap unen san hota unye badla trahe to King Indian Army wan LOC cross kane ka Pakistan occupied Kashmir mahat nega san eta chalme un fira an tinang an tinang atla pang atla te to King Indian Army san ka Balakur air strike nisa ka operation sindur san nako kata chalme to tinang hera to unja dungin lika wan United Form of Bank Union san wan In some past strike command, Neka Crapoton got to unwon nationwide in some past strike command, Crapoton. Undecision agreement, I think to a session at Runeka, IBS and Runeka, Tarnak Natsalme. One defeater, he young Bengango, a castle strike a little Tatsalme. Ura talk more, I want to. World Tourism Day celebration, Governor Ka Anja Tika Homestay. Changlang hai wan wan best homestay award p ka chalme ura kara suchi homestay 0 and bomdila embassy 1 commendation award p ka chalme matin anga ms himalaya holiday west coming 1 best tourist operator p ka chalme matin anga jalangphong around tourism information office 1 commendation award p ka chalme on ma langho wan pasi ga the anja Gumi Nagar World War II Museum ga hai wan स्वच्छ भारत पावन स्वच्छता समाधान को कट असल में तो अन गुंग में वन ग्लाट गुंग कंबु ग्लाट है सा नंग से कंबु ने पार्टिसिपेट को कट असल में नी का अन फमेन मोटिव अन तो किंग फंजा टूरिज्म जगह में खसत सफा कने का टूरिज्म मोट कदम असल में अन फिरा तो अनजा ग्लाट गुंग है चोंग नंग से कंबु होने का पार्टिसिपेट करने का तो अन खाना असल में तो किंग ग्लाट आवन सिविक सेन मतलब शव किंग ग्लाट एक सोंग सोंग ने थाट ने खान दवन सु खान का असल में मुई काटी नंग तो ngo ewan ale jolang he tanagar lewan youth orientation program my help my pride organize sukra chal meto anwan brahman kumar raj yoga meditation and de education jolang ha samna chal me to anwan my bharat arunachal pradesh nang youth wing raj yoga education nang research foundation na rune ko chal me to anwan minister of sports and youth affair gogna hula chal me तो अन फमेन मोटिव तो यंग मा सा खान तम खात दो क्लोंग तम सन कांग शेंग गांग सत समे योगा कने का शो फिजिकल एंड मेंटली फिटनेस चक वन जो खेम ना चल मे वन कति नांग तो अन तो दिन तो सा सन नंगिन गाल बे लम तो को शेंग गांग लाय मन को चम पाप लेट मन वन नि सत तकति अन योगा बन द चल मे वटी नांग हे रातो अनजा एशियन गेम है एन सी सुजन एपीडी वन सिल्वर मेडल ठान का डा वोमेन लॉन्ग जम्प है वहीं कर अंजा सर्वेश कुमार वन सिल्वर मेडल ठान का चल में अंजा अन वन लॉन्ग जम्प ठान का चल में रटी नंग है अंजा अभियान सिंह वन ने गोल्ड मेडल ठान का चल में और अंजा अर्नब सिंह बैगिंग वन वन वोमेन्स सिल्वर मेडल ठान का चल में तेजस्वी शंकर भगन अनवन ब्रॉन्ज तंग का चल में जा डी कैथलोन है रोटी नंगर अंजा हरिता बंडर वन ने ब्रॉन्ज मेडल तंग का चल में वोमेन 200 मीटर रेस तिंग्याल में है उरा कर अंजा पेलू चौधरी वन ने ब्रॉन्ज तंग का चल में वोमेन 300 मीटर है वन दिपिरा तो द्रुपति मूवमेंट वन तो अन सन ने को मेडल ठान सन तक विश कंसल में तो अन विंग किंग इंडिया सिट नंदन ने का रोटो किंग इंडिया वन तो कंबू है गोमरे रचित ने रा को कैप मो किन पोजीशन है चल में वहीं का कंबू मिला ना किंग वन तो बिशी मोनेंट मो मिडिल काम चल में वहीं वन गोल्ड मेडल ब्राक मोटन चल में वहां करा सिल्वर मेडल ब्राक कैप मो कटाम सो करा ब्रॉन्ज मेडल वन ब्राक कैप मोनेंट काम चल में रटी नंग है रावन मो वेकिंग पर गवर्नर वन जा होम स्टेशन वि नन्या वे अवार्ड पी कम सन इवन तिनंग विश का नाम चल में तो सो Tuis promote kasih yang sokat tinang tinang hum tamsan nak kembui syosat kat bencin.

0: मास क्लीनिनेस ड्राइव, स्वच्छता, श्रमदान, अनलिंग, वन मंगा अनपुन का, ने मई, अवनीनी, सी, निया वांग, द हम्प वार, वॉल वार, म्यूजियम एंड टूरिस्ट लॉज, गुमिन नगर पासीघाट अन कनेक्शन तंग स्वच्छता ही सेवा सोंगहिंग साहो, सेवा मेरा योगदान सोंगहिंग साहो, खंसम, वर्ल्ड टूरिज्म डे साउ हिंग साउ हो अमोन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्लीनिनेस नई कचम क्लीन टूरिस्ट साइट्स मई फोकस हलसी तंग एस एच एस सोंग हिंग साउ हो हिटकन मा कायव खनसम चाहंग मने गौखाम तुखैनाय नम हो
1: As I be my answer nai tong sang ye hang kam hang kyang tu pa chau mai tang mot mai an ye sa nam ho As I be lut phi mau kam mau kyang si hom non khim khim sa ya han kau luk me luk mai Nu As I be my answer nai tong sang ye hang kam hang kyang tu pa chau mai tang mot mai an ye sa nam ho HIV lut phi mau kam mau kyang si hom non khim khim sa ya han kau luk me luk mai chang phi nam ho ta kan si mat ta hom nang hom kin wam kan tu kan kot kan cha leung yung kap ye HIV nai mau phi nam ho HIV mai ka chi au lem ta आहिंग माइ टोंग ये शुया शुवानसी उनी खेमसा आसा याउसी निपसु पिन कयो एजाइबी माइ पकोटा अनटोंग औनमता कची कपेटा अनटिया कोन कोननी कोनमेनी औहाइदा नमसी खटोंग ये नेशनल एड्स हेल्पलाइन ओलंगलोम कौचित माइ कॉल हिटा अनै पोइमा नु पब्लिक इंटरेस्ट लोक अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DSS नहा लोगों नम हो
0: मनै ओइ खाम मै नांग जनवा मंजी

0: chom aking nam nali na khok studio mai chu kan wa ba cha fa poi nai kham dai kham ti te khai mai sut yo ho sa thu
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं के कार्यक्रमों को और आप इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं अरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का, तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।

तैयारी में जुट गई है, जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। लेकिन ट्रेलर सादे तरीके से नहीं बल्कि ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि इस तैयारी में शामिल है इवेंट में यामी गौतम के स्वागत के लिए लगभग 250 ढोल बजाए जाएंगे। मकसद एक जश्न जैसा माहौल बनाना है, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिलने के बाद पहली बार यामी गौतम किसी बड़े पब्लिक इवेंट में वापसी कर रही है। फिल्म नई नवेली अमेजन एमजीएम स्टूडियोज, यामी गौतम धर और फिल्म मेकर प्रोड्यूसर आनंद एल राय के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है, जिससे ये ट्रेलर और भी ज्यादा खास बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा 30 सितंबर को मुंबई में रिलीज किया जाएगा और फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। फिल्म नई नवेली को हिमांशु शर्मा और दिव्या निधि शर्मा ने लिखा है और बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है। इसमें यामी गौतम के साथ मीता वरिष्ठ, सोनल झा, राजेश दुबे, आदित्य कुलश्रेष्ठ, आदिनाथ कोटारे जैसे कलाकार नजर आएंगे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांझो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि सेप्टेम्बर लेट मनी चा अचतारीख होमवार इरुमकेम वांचो चाय का होवांग वांगना होवांग ए का हो पाई फाले मंचुई जामे कमे इंडिया ए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स काउंटर टेररिज्म पॉलिसी तेमा चावानु नो खातो आहोले डिंग मखांगे हाप के फैमा रंग बनगुइना हले 2016 रंग पोमा सेप्टेम्बर साचत या चाकुनी तो इंडियन आर्मी ए पाकिस्तान जितो ओम के जम्मू एंड कश्मीर पीओजेके हातो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी हासल लोंगरी पोंग तो फाउमी बु अथोंग अना लंग ओके होनुई तो अखपले डिंगची मखंगे सिंगले हाप चंगे हले उरीमा सिंगले हाप सान कमा इंडियन सेपाई बु मिहक बन्नत मंग मिहक बनकु मंग माके होले हाप चंगे केम गवर्नमेंट ने हाले 2016 रंगपो मा टूंग के फैमा 2019 मा बालाकोट एयर स्ट्राइक

0: အန်တိုလေ2025ရောင်းပုံမကျူအော်ပရေရှင်းစင်ဒူလေမော့ဒဝါ United Forum of Bank Union Stam A အညမခန့်အဒက်စမယောဘန့်စထရိုက်ညရမ်အငေါတ်အိုင်လေတုံကေအထောအနာလငိုင်လေဟာလေ Indian Banks Association IBA ဟောထမ်ဖေအရုံဖေမာဖန်လေ Social Media မှာ All India Bank Employees AssociationAIBEA ทำเอฮาเลมายา IBA บ่มา Bank Union อนัตคามาอคอเก UFBU นีบามาปังนูอรองละละพันปุละฮอเล Governor Lieutenant General Retired Keti Parnai ka manji Itanagar ma World Tourism Day Chen ma State Tourism Awards bu ko le Hale Bela Tikak e Humele ngok e MeopumTours and Travels Anke Changlang Toke Tikak Homestay A Best Homestay Award Boma Jiro Toke Suchusi Homestay Hiya West Kameng Toke Bomdila Embassy Nyi A Commendation Award Lekable Halaway West Kameng Toke Mesa Himalayan Holidays Hopu Hotong Sering Wange Proprietor A Best Tour Operator Award BomaItanagar ke Mesa BSC Voyages Heya Mesa Anesiang Tour and Expeditions Proprietor Gandhi Darang Nye Commendation Award Lekaple Haboma Best Performing Tourism Officer Award 2017 Batch Officer Changke Devang Valley District Toke Tourism Information Officer Lamwang Ara Nekaple Home Minister Mama Natung e Mani Upper Siang District to Pitung Anke Vivekananda Kendra Vidyalaya VKV Ma Prime Minister Narendra Modi e Pangnusa Yongphong le Rangsa Aga Mokdau ke Hanpak Male Atua Jake Sewa Sankalp Abhiyan Karap le Hayama Natung e Haya Campaign Khanak Numoto Haikali Government Satmotia Welfare Motli le Khat Lechu Zailo Honuhiya Honu Korong Buto le Khanak Nu Mokdau ฮาต่อสอเลมกสะเลกอังแลตูยาปุลวันเลเซวาสังคัลป์อภิยันเกมฮาลาเวมาริยังตจูตูยาเลฮายมะกอเมนดีพาร์ทเมนต์บูเอมาลีมาลีมดมกเลกอเกบอมาเวลเฟียร์สกีมเซียโปรแกรมส์บูบามจูวันโกเลฮายเกมมามาริยังอันโตเลฮายาฮรูนัมตเกเลคานักนูฮอฮอฮอยูอะพอเลมันยีปาสกัตโตสวาสตายีเซวาHSS 2026 Seva Mera Yogdan 2026 Boma World Tourism Day 2026 Phaike Angle Gumin Nagarma The Hump Leke Volva Second Museum and Tourist Lodge Honu Azaule Swasta Sramdan Le Hamthopungtho Ranglamokle Hale Khanak Nuwe Haleke Tourist Thong Nui Nanui Bu Chaule Thamang Le Nakte Bakle Tu YakachangkeMany Itanagar ma Yolang anke Brahma Kumaris Raj Yoga Meditation and De-Addiction Center ma My Health, My Pride le Charan Sanran Tham Hanpak ma programs atuja le Hale Government of India toke Ministry of Youth and Sports Affairs khama My Bharat Arunachal Pradesh bo ma Itanagar anke Raj Yoga Education Research FoundationRE RF anto le Brahma Kumaris kha anke Youth Wingလေအရှမ်လာလေခနကနူအေမာချန်စာစောလေမိုင်လေသမံကဘာမချူနဆင်ဟဘောမာတောင်းငါကလီဆာလာခချူနဒန်ဘက်လေတူဂျာကချန်လေဟဘောမာဂျာပန်တိုအေရှမ်အေရှန်ဂိမ်းစ်မာအင်ဂျာခန်ကေအန်စီဆိုဂျန်အီဒပီလီအေအိုင်ချီနာဂိုယာဟိုနိမာအတူအပန်ကေဝူမန်စ်လောင်ဂျမ်ဟာဖတ်မာအပန်ကေမဆီလ်ဗာမေဒယ်လတ်လေမန်စ်ဟိုင်ဂျမ်မာဆာဗေးစ်ကူရှာရေအချူဆီလ်ဗာမေဒယ်ဝဲလတ်လေစကွာရှ်မာအဘိုင်စင်းအမန်စင်ဂယ်မာဆီလ်ဗာဘောမာဝူမန်စင်ဂယ်အီဗန့်မာအနာဟတ်စင်းအချူဆီလ်ဗာလေဟာယာရာဘောင်နီမာဆီလ်ဗာအညီလတ်လေဒက်ကက်လွန်မာတေဂျက်စဝင်းစင်ကာအဘရွန်ဇ်မေဒယ်လတ်လေဝူမန်စ်200 meter event ma harita badra a bronze boma women's 3000 meter staple chess event ma पारुल चौधरी एचु ब्रॉन्ज मेडल ललले हल मेडल लत के थमतो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए मईपुल फुमरमले इंडिया मेडल तलीमा गोल अली सिल्वा बन रोक बोमा ब्रॉन्ज बन अनत ले ओमला ले मेडल्स पंगनु चबन अनत पाई थम बन अनी लेक तो हाई गोटान तैले अनी कक हो इवाई इजा आकाशवाणी ईटानगर का हो फैमा खा खा खा के साय का बु पहाई एचआईवी कपली बामा हिक्तिक ले यंग सिंथे बा हायवाई होनु चंपू एचआईवी का हलके कपली भाई के जमाई के अजी होकन होली चिताई ले जी पम के हनिंग के कपनी तो तब दो के मत कुई मखांग यंग तब बा अंतो ले होनुआं के होसा तो ले आताई ले पराई ले आका थम है हाया का तमले ngotong के जक असप अपोंग के तमले सा लिंग के मुन खाउ मुन सों ए सत के निंग के खांगे ले मंतराई एचआईवी का तैदा चले पान नोको हनिंग के बामा पोंगपन मा यांग सिंग यांग लप थैबा काकलक रिंगले अमैले सन नो लंगवांग कपै एचआईवी काकली थो तारा हनिंग के बामा अताता आंग अपोनो ले को काक तैदा चले बान के बोमा अताता तो जु तक्यक ता कोन हायबा मपंगनु सिंगसे थेबा नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 मा टिकटो चकै एयका पंगनु सान पंगमले डीएचएस नाहलगन तोके अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जि मखंगे आहिले खा खा खा का जु इवै
1: आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं के कार्यक्रमों को आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 पर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुन पाएंगे। और श्रोताओ आप अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए श्रोताओ इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गानों को।

वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इजहारे इश्क का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद उमेश भी श्रोताओं के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: को कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ईद उमेश भी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर सेलापुची जान्यु हियु आसोली नि एतनिसि इदुमिसमी आहोला के जे नरगालंबो आहा इनुजार का होला हरमाचिनु पाकिस्तान में डोला आर्मी एरिया में इंडिया जुबुने काश्मीर माचे उरी आतिकामा आमोगा ने इंडिया माचे होलुखिनी चपहे आलमब्रो मैसापा इंडिया में आ माचिनु इनितानी एलोसी आतिपाय हेको बालाकोट आतिकोचे आर्मी या जिमुमा अमोग है एतान्यो हूनु बताने गवर्नमेंट में ला होगा बैंक मा जया नंबर में एने अच्छी आशिका जी थोपू अशुमा ने एता ने आसुनी के बने बैंक मा जो मी हुए लातेगा चाहे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन स्टोन एम इंडियन बैंक एसोसिएशन एपगा चिचगा पा बया गे बने अनेगा ना बदा आ होगा बुनी इटानगर मने करुची दे माचे टूरिज्म दे इनी एनागा महो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी परनायक में अवार्ड उखो अपे बमा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट माचे मयापुन टूर्स दोनेम ट्रैवल्स हेता बेला तिथाक चे तिखाक होम स्टे है बेस्ट होम स्टे अवार्ड हागा बमा हो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो अतिकोचे सुचिसी होम स्टे दोने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट माचे बोमदिला एम्बेसी होम स्टे है नवया सर्टिफिकेट आजप्रा हागा बदा होगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट माचे सेरिंग वांगे में हेतानेला मेसर्स हिमालयन होलीडेज में बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड ग्राम बमा मेसर्स आने सियांग टूर दोने एक्सपेडिशन टूर ऑपरेटर्स माचे हेता गांधी दारांग में नवया सर्टिफिकेट आजप्रा चीम बदा होगा आमा महा इनु एजार कहा हुलु माचिनुचे बेच माने टूरिज्म ऑफिसर आजा साइगा दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट माचे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर लामुआंग हरान में बेस्ट टूरिज्म ऑफिसर अवार्ड चिम्बादा आ होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लीडर हेता शागा अन्य हो मगन वाची पो बुनी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट पीतुंग बिकी बिमाने आ डिस्ट्रिक्ट के बने सेवा संकल्प अभियान आकापगम बा अरुणाचल प्रदेश होम मिनिस्टर मामा नातुंग में आयोपहाय बदा होगा आतिका चिमू में जो हिवे खागान दो अनुमा ने जो हिगा नाव के बने आ कैंपिंग अखगा जिदा ने नातुंग में लाय बमा हो मारियांग आतिको ने अब अली कैंपिंग अखागे ने डिपार्टमेंट आलमर में आतिका चिमू स्कीम दो चिपो ला के बदा होगा बुनी वर्ल्ड टूरिज्म दे इन्नी अनागा माचिनी आतिका से दे आखवे प्रोग्राम को कोमाने ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट गोमिन नगर माचे द होम वर्ल्ड वार टू म्यूजियम दोने टूरिस्ट लॉज हिमु एपेगा कैसा अपेलगा दा ला होगा अरुणाचल प्रदेश के बाद माई भारत हारो दोने ईटानगर ब्रह्म कुमारी हारो में यूनियन स्पोर्ट्स दोने यूथ अफेयर्स ओकोमा ने ईटानगर जुलांग आतिकोची ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन दोने दि एडिक्शन सेंटर माने आयु अलम्ब्रोची अव होसो देबा एव चिपुआ प्रोग्राम के आखाने गला दा ला होगा आतिका चिमु में अरुणा थु सांगा ऐ दोने तो सा दु सांगा इगा जिगा लांडो उताची गने अली प्रोग्राम आखाने गा जिदा ला होगा एशियन गेम्स तारमगामा इंडिया में बुनी लिबा असुर इव मेडल अनेतिगा बमा गोल्ड कप सिल्वर होला हो दोने ब्रॉन्ज मेडल होनु खेपगादा ला होगा बुनी स्क्वास माने अबैने अनहत सिंह में गोल्ड मेडल खेगता अनेतिगा बमा मे आचे कानो दोमागा माने सर्विस कुसारे में सिल्वर मेडल अनेत्य बदा आ होगा तेजस्विन शंकर में डेकाथलोन माने ब्रॉन्ज मेडल अनेत्य बमा हो हरिता बाद्रा में याकुची मौकानी मीटर ठुमगा माने ब्रॉन्ज मेडल आई दोने परोल चौधरी में याकुची एजार कासो मीटर स्टीपुल चास ठुमगा माने ब्रॉन्ज मेडल अनेतिगा बचा है एंगो खोआ बबदा ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में नरगादा आ होगा etansi idmismi aho alima on the bay
0: HVMB HIV-MB chipo asawe auda kaga.
3: HIV-MB hai HIV gila mingi chi iyo gha doga ga kandu ne ji doga ga HIV-MB gila injection tapo biji chi ta doga ga mane HIV kui ali oda HIV-MB gila nani me a ga mane kha doga yi.
0: HIV-MB hai japa ji ge akonwe ga ge japa hatuga ge ai oda ne arundo me toba mane HIV-MB kui gumi.
3: Aline HIV hembe gi jingaji tamako atusuwe arunda kaga hembe gi obojama asaga gi go abengo yabu ijiga atuchi toga hiwe HIV hembe yiji mi kaba asaga alaziji tamako agutene atusuji icha HIV hembe chipuma ichibu asawoda ugai buya hai National AIDS Helpline chi number kage jiro kini uma call eji icha koba hai Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Department of Health Services, Nahalagan Machi Me Lahega.
0: आप सुन रहे थे ईद ओ मिशमी श्रोताओं के कार्यक्रमों को आप इनके कार्यक्रमों को आगे भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और श्रोताओं आप हमारे कार्यक्रमों को सुन पा रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और अब से थोड़ी देर में यानी कि 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांसा श्रोता के कार्यक्रमों को और उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा सेकंड ट्रांसमिशन। पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे तीसरे ट्रांसमिशन में और उसके लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे नोरा। और अब मुझे यानी कि आपकी रेडियो साथ ही बामिन सुम्पी को आप दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आप सुन रहे थे तांसा श्रोताओं का समाचार। वक्त हो चला है मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर चलने का। दोस्तों, कहते हैं कि हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है और जब उम्मीद के साथ हमारा विश्वास जुड़ जाए तो हर कदम हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाता है। चलिए इस उम्मीद के साथ कि अगला सफर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है इस उम्मीद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरी प्रसारण सभा और इस खूबसूरत शाम में मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी। और सबसे पहले चलिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी दूसरी प्रसारण सभा के आरजे पूरा दुनिया का, जिन्होंने स्टूडियो की कमान हमें सौंपी है और इस प्रसारण को सुचारू रूप से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसारण अधिकारी श्री गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता श्री होलीराम ब्रह्मा। तो दोस्तों, शाम का यह वक्त अपने साथ अपने आप में बहुत खास होता है और दिन भर की भागदौड़ थोड़ी थमती है, मन हर पल ठहरता है और हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाते हैं। तो क्यों ना शाम को कुछ अच्छी जानकारियों, कुछ इतिहास की रोचक झलकियों और कुछ प्रेरणादायक बातों और मधुर संगीत के साथ खूबसूरत बनाया जाए। तो इसी खूबसूरत सिलसिले में अब बारी है अपने पसंदीदा कार्यक्रम और इस सभा की पहला कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की। तो दोस्तों, आज है 20 सितंबर 1926 और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण समाचार सुर्खियों की, जानेंगे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में और साथ ही साझा करेंगे कुछ आसान मगर बेहद काम के लाइफ टिप्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्णय किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड से यह बात सामने आती है कि एसआईआर का निर्णय आयोग का सामूहिक निर्णय था। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में खासकर पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की आवश्यकता है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी आपसू की टीम ने भारत चीन सीमा के निकट स्थित अनिनी क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने वहां स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया और इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी के मुद्दे को भी उठाया। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख समाचार सुर्खियां। हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाने वाली हर खबर सिर्फ सूचना न हो बल्कि आपको आसपास की परिस्थितियों से जोड़ने का माध्यम भी बने। फिलहाल समाचारों का यह सिलसिला यही रोकती है और वक्त है थोड़ा सा संगीत का। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

दोस्तों उम्मीद है कि कार्यक्रम का यह पहला गीत बड़ा ही मजेदार लगा होगा आप सबको। दोस्तों अगला सेगमेंट है इतिहास की पन्नों से। दोस्तों तारीखें केवल कैलेंडर के पन्नों पर दर्ज अंक नहीं होती, हर तारीख अपने साथ कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आती है जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली, समाज को प्रभावित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी एक छाप छोड़ दी। तो अब समय है ये जानने का कि 28 सितंबर का दिन इतिहास के किन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है।

तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, हर तारीख अपने भीतर इतिहास की कोई ना कोई कहानी समेटे होती है। तो आइए अब कुछ पल के लिए आज से जुड़े इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां दर्ज है कुछ ऐसी घटनाएं जिनका असर अपने समय से कहीं आगे तक दिखाई देता है। बहादुर शाह जफर अपने पिता अकबर शाह के द्वितीय के निधन के बाद नाम मात्र के मुगल सम्राट बने। 1950 इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का 60वां सदस्य बना। 2008 निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स ने पहली बार फैल्कन 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। 2016 भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में लक्षित सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2018 उच्चतम न्यायालय ने केवल केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आज के दिन यानी कि 28 सितंबर को जन्म लेने वाले महापुरुष 1907 महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब के लायलपुर में हुआ था। 1929 भारत की स्वर कोकिला और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। प्रसिद्ध निशानेबाज और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा तथा बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का जन्म आज ही के दिन 1982 में हुई। विश्व रेबीज दिवस रेबीज की बीमारी और उसकी रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इतिहास के पन्नों से। फिर से वक्त हो चला है सुनने का एक और खूबसूरत गीत।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज के हमारे श्रोता दोस्तों, आपको बता दें कि आप आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर आज नूरी के साथ। इस खूबसूरत गीत के बाद अब वक्त हो चला है सेगमेंट लाइफ टिप्स का। आज के लाइफ टिप्स में बात एक ऐसे विषय की जिसके बारे में सही जानकारी होना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, और रेबीज एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समय पर सही सावधानी और उचित मेडिकल केयर के जरिए रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और जरूरी बातें। पहली बात, कुत्ते या किसी दूसरे स्तनधारी जानवर के काटने या खरोचने को हल्के में न ले। घाव छोटा दिखाई दे तब भी मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में सबसे पहले घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोएं। इसके बाद बिना देर किए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से इलाज करने या घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें। रेबीज से बचाव के लिए आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन और अन्य उपचार समय पर लेना बेहद महत्वपूर्ण है। और एक बात, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यवहार के लिए भी, आवारा या अनजान जानवर को छेड़े नहीं, बच्चों को भी उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना सिखाए। साथ ही पालतू कुत्तों का रेबीज वैक्सीनेशन समय पर करवाना पालतू जानवरों और पूरे समुदाय दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने के लिए होती है। इसलिए आज के वर्ल्ड रेबीज डे पर एक छोटी सी बात याद रखिए, सावधानी रखिए, जानवरों के प्रति संवेदनशील रहिए और किसी बाइट या स्क्रैच को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। तो मैं हूं आप सबके साथ आज नूरी, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर आप सभी के बहुत ही चाहते चैनल और अरुणाचल की अपनी आवाज आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर। चलिए कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत, और आपको बता दूं कि गीत के बाद तुरंत हिंदी, अंग्रेजी तथा नुक्ते भाषाओं में समाचार सुन पाएंगे। तो बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स अस्पताल में नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के सहयोग से राज्य का पहला सफल रिनल ट्रांसप्लांट पूरा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के बाद केंद्र सरकार के फैसले के रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों के आज से शुरू होने वाले 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने अपर सियांग जिले के पित्तुंग स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। पासीघाट के गोमन नगर स्थित दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय और पर्यटन लॉज में सामूहिक स्वच्छता अभियान स्वच्छता श्रमदान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ईटानगर के जोलांग स्थित ब्रह्म कुमारी राज्योग मेडिटेशन एवं डी एडिक्शन सेंटर में मेरा स्वास्थ्य मेरा गौरव विषय पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं के 25 मीटर पिस्तल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक नया इतिहास रचा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स अस्पताल में नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के सहयोग से राज्य का पहला सफल रिनल ट्रांसप्लांट पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने ट्रिम्स पहुंचकर मरीज और उसकी बड़ी बहन से मुलाकात की। मरीज की बड़ी बहन ने निस्वार्थ भाव से अपनी एक किडनी दान कर अपने भाई को जीवन का नया अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक प्रारोपण को संभव

0: बनाने वाले डॉक्टर्स, नर्सों, टेक्नीशियंस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से भी मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इन सभी की समर्पित सेवाओं और अथक प्रयासों से राज्य में ये ऐतिहासिक रिनल ट्रांसप्लांट संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हर्ष जौहरी और उनकी पूरी टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि रिनल ट्रांसप्लांट की दिशा में ट्रिम्स की क्षमता विकसित करने में उनकी विशेषज्ञता, समर्पण और निरंतर मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक की यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिदावियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया है कि भुगतान गेटवे के 96% उपभोक्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लाया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि यह निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियंस और एसोसिएशंस ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणालियों को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने के 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते 1 दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा।
0: देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायरपुर जिले के बांगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सुनिए अमन यादव की ये रिपोर्ट।
2: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया।
0: अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने अपर सियांग जिले के पित्तुंग स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय से सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य नागरिक केंद्र सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी पहलों को लोगों के और करीब पहुंचाना है, विशेष रूप से दूर दराज और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक इन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि इस पहल के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सेवाओं की घर द्वार तक पहुंच और व्यापक जनसंपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में मारियांग सब डिवीजन में भी सेवा संकल्प अभियान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। स्वच्छता ही सेवा 2026 एवं सेवा मेरा योगदान 2026 के अवसर पर पासीघाट के गोमन नगर स्थित द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय और पर्यटक लॉज में सामूहिक स्वच्छता अभियान स्वच्छता श्रमदान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता नागरिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना था। ये अभियान स्वच्छता ही सेवा 2026 के स्वच्छ पर्यटक स्थल पर केंद्रित प्रयासों के अनुरूप आयोजित किया गया। इस सफल अभियान के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक सहभागिता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित किया गया। युवाओं में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, भावनात्मक दृढ़ता, स्वास्थ्य जीवन शैली, नशा मुक्त और जिम्मेदार नागरिक के प्रति गहरी जागरूकता और चेतना विकसित करने के उद्देश्य से ईटानगर के जलंग स्थित ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन एवं डी एडिक्सन सेंटर में मेरा स्वास्थ्य मेरा गौरव विषय पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन माई भारत अरुणाचल प्रदेश तथा राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी ईटानगर के यूथ विंग द्वारा किया गया। कार्यक्रम भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित हुई। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य को केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत चिंता तक सीमित न रखते हुए इसे सामूहिक स्वास्थ्य संस्कृति, आत्म अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी में बदलाव आवश्यक है। अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा है कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेश संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहे में है। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. The Supreme Court today refused to stay the center's decision to impose merchant discount rate on specified person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupees, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joy Malia Bakshi and Justice V. Mohana sought responses from the centre, the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter-affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. Appearing for the centre's Additional Solicitor General N. Venkataraman told the bench that 96% of users of the payment gateway remain exempt. The public interest litigation challenging the move was filed by advocate Anjan Datta. Earlier, the center had announced its decision to impose MDR on specified person-to-merchant UPI transactions about 2,000 rupees. The Supreme Court today took suomotu cognizance of the alleged gang rape of a minor in a moving bus in the Delhi NCR region, observing that such cases underline a systematic failure on the part of law enforcement authorities. A bench comprising Justice J.B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran observed that public spaces, including parks and buses, cannot be allowed to turn into high-risk zones because of inadequate lighting, poor surveillance and the lack of other essential administrative facilities. Last month, a 16-year-old girl who boarded a sleeper bus in Greater Noida was allegedly gang-raped by its conductor and driver and abandoned near Kashmir Gate, Delhi. The two accused have been arrested. United Forum of Bank Unions has announced that the proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association. In a social media post, the All India Bank Employees Association said that this decision was taken after a meeting held between the IBA and the UFBU, the umbrella body of seven bank unions, last night on the issues related to the strike. Earlier, a three-day nationwide strike was called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in public sectors from 28 to 30 September. They had called a strike in support of two principal demands, implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC. Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot strike and Operation Sindoor as examples. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia today said that over 100 crore people in the country receive social security coverage. This includes 5 lakh rupees health security coverage for over 60 crore citizens, ESIC health security for 25 crore people, free grains to over 80 crore people and financial assistance to farmers and women. The minister was addressing the National Conference on Industrial Relations and Labour and Awards in New Delhi. The nation is paying homage to revolutionary freedom fighter Bhagat Singh on his 119th birth anniversary today. It was on this day in 1907 Bhagat Singh was born in village Banga in the Lialpur district of Punjab, now in Pakistan. The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi after the inaugural session of National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said that the governments of Maharashtra and Karnataka have declared droughts in larger parts of their states. In Asian Games 2026 in Japan, India's Isha Singh won silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi, Nagoya today. That is all in this news bulletin. Namaskar.

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा नोक्ते प्रोग्राम अठुए सैनम वैमंगा बाजी दंगे के ठजा हुम्बेजा सितंबर जंग रोकनी वैनसत तारीख खोबे चोको के तुमंगरु तुम्हें खबरें दंग के ईटानगर व तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ले न्यू दिल्ली व सर गंगाराम हॉस्पिटल में रोमला में अरुणाचल नंग खबंग ट्वेन रेनल प्लांट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पे हुन वामे चोटेट की थजा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में ट्रिम्स को अरे पेशेंट ले अटे खाखो हन में अटे नंग किडनी कोला में रुएंडोंग न्यान को के अरे दमकोमिन चोमिन कैवा अडिको डॉक्टर नर्स टेक्नीशियन ले चिंतो मेडिकल को कामुते तोंगा हे दमनंग मिन चोमिन वा ngale nya rang dang kwa nge va adiko sar ganga ram hospital va dr harsha jauhari le ate team he nang min hung me dang kwa jo nge va nga me chu ta de ki thaja surgical strike huan ta ko va pai chi le ke apadang ke narendra modi government counter terrorism policy nyen 2016 september rokni venesat

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में।
2: श्रोता दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा नोक्टे में समाचारों को सुनने के बाद अब वक्त हो चला है फिर से चलने का गीतों के सफर में। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ। दोस्तों दिन ढलने लगा है, सूरज अपनी रफ्तार धीमी कर चुका है, सड़कों पर घर लौटते कदम है, कहीं ऑफिस से वापसी की जल्दी है, कहीं बाजार की रौनक है और कहीं घर की बालकनी में बैठकर एक कप चाय का इंतजार। शाम का ये वक्त बड़ा दिलचस्प होता है। दिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन उसकी थकान महसूस होने लगी है और शायद इसी वजह से शाम हमें एक छोटी सी सलाह देती है, थोड़ा रुकिए, दिन को समेटिए और खुद को भी थोड़ा समय दीजिए। दोस्तों इसी भावना के साथ हम आपके साथ चलने को तैयार है एक और गीतों भरे सफर में आकाशवाणी के अरुणा FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ, और उस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने वाले बेहतरीन से बेहतरीन गीतों के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, शो इवनिंग ड्राइव हम शुरू कर चुके हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म गुंदारा से अलीशा चिनॉय और कुमार सानू की दिलकश आवाजों के साथ। क्या आपने कभी गौर किया है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम दिन भर कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, एक पूरा काम पूरा हुआ नहीं कि दूसरा सामने, एक फोन रखा नहीं कि दूसरा आ गया, एक जिम्मेदारी खत्म हुई नहीं कि अगली शुरू। और इसी भागदौड़ में कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। शायद कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, लेकिन सुबह समय पर उठे, अपना काम पूरा किया, किसी की मदद की, किसी मुश्किल सिचुएशन को संभाला, या फिर बस इतना किया कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। और दोस्तों, हर अचीवमेंट को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। कुछ उपलब्धियां जो है ना, यानी कि कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती है जिनकी गवाही सिर्फ हमारा अपना मन देता है। तो आज शाम खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट कर सकती हूं या कर सकता हूं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि हम ये करना भूल जाते हैं। बहुत कुछ करते हैं, हड़बड़ी में जिंदगी बिताते हैं, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होते हैं ना अपने, उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना भूल जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ छोटा सा भी अगर किया हो ना जिसके लिए खुद गर्व से कह सके या मैंने किया है, तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे साथ इवनिंग ड्राइव में इस गीत को भी अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा।

0: श्रोता दोस्तों, आपने ये गीत जरूर पसंद किया होगा और आप इस गीत को सुन रहे थे आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आरजे नूरी के साथ कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं हम और हमारी शामों की। दोस्तों, शाम की एक और खूबसूरत बात है, यानी कि इवनिंग्स की एक और बहुत ही बेहद खूबसूरत और खास बात यह है कि ये हमें लोगों के करीब लाती है। दिन भर मोबाइल पर मैसेजेस आते जाते रहते हैं, लेकिन शाम को किसी अपने के साथ बैठकर सिर्फ 10 मिनट बातें करना उसकी बराबरी शायद कोई नोटिफिकेशंस नहीं कर सकता। अगर आपने आज तक ये नहीं किया है, दिन भर काम के पीछे लगे रहे, अपनी मंजिल के पीछे लगे रहे और सक्सेस की परिभाषा को परिभाषित करने में लगे रहे और इन बातों में अपने किसी के साथ बैठकर चंद मिनट सुकून के पल नहीं बिताए, तो फिर आपने क्या जिया? इसलिए कहते हैं, एक कप चाय, थोड़ी सी बातचीत, आज के दिन का किस्सा या किसी पुराने दोस्त के साथ पुरानी बातों को याद करना और अनायास ही खिल खिलाकर हंस पड़ना। और अगर जिंदगी में आप उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि आपको लोग बुजुर्ग कहने लगे हैं, तो आपने किसी ऐसे साथी के साथ जिनके साथ आपने बचपन बिताई है, जवानी गुजारी है, उनके साथ बैठकर अपने उन हसीन दिनों को याद करते हुए खिलखिला उठना और हौले से मुस्कुरा देना। अगर ये नहीं किया ना, फिर आपने जिंदगी क्या जिया? इवनिंग ड्राइव में हम ऐसे ही बातें करते हैं आप सबके साथ आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के सफर में मैं हूँ आरजे नूरी, कर रही हूँ दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से और कई यादों को खोलकर मुस्कुराते हुए। चलिए एक और गीत हो जाए।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

दोस्तों, हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियां हर दिन हमारे पास सामने रखती है। जैसे घर में किसी के साथ बैठकर बिना किसी वजह के हंस देना, या किसी पुरानी एल्बम निकालकर जिंदगी के उन हसीन पलों को फिर से याद करना, या कोई ऐसा ही गीत सुन लेना जिसे हमारी यादें जुड़ी हुई हो। दोस्तों, ऐसे छोटी छोटी बातों में ही खुशियां बसती हैं, लेकिन हम पता नहीं किस खुशी और किस बड़ी खुशी के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, मकसद यही है कि आपको बताना कि जिंदगी के छोटे छोटे पलों को जीकर जरूर देखिए और उन खुशियों को एहसास करके जरूर देखिए। जिंदगी ना कुछ और ही कहती है और हम जिंदगी से मांगते कुछ और है। चलिए, अगले गीत हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, सुन लेते हैं।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज की शाम की इवनिंग ड्राइव बस यही तक। तो श्रोताओं, इस शाम आप अपने लिए एक छोटी सी जगह जरूर बचा कर रखिएगा, किसी अपने के लिए एक फोन, किसी दोस्त के लिए एक मैसेज, घर वालों के साथ कुछ पल और अपने लिए थोड़ी सी शांति। कल फिर एक नया दिन होगा, नई जिम्मेदारियां होंगी, नई चुनौतियां होंगी और शायद कुछ नई खुशियां भी। लेकिन अभी इस शाम को महसूस कीजिए, कोई क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी बड़े मौके पर नहीं बल्कि

ऐसी ही साधारण सी शाम में बनती है। तो दोस्तों, आज जरूरी आपसे यही कहना चाहती है कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यही पे समाप्त होता है, लेकिन आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रमों का सिलसिला अभी जारी है और अगला कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे शाम की महफिल।

दोस्तों, यह आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है और आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ शाम की महफिल। दोस्तों, आज की शाम की महफिल कुछ खास है, कुछ ही अलग। वैसे नॉर्मली हम आपके लिए पेश करते हैं इस कार्यक्रम में सोलफुल सॉन्ग, यानी कि कुछ गजलों का संकलन या कुछ ऐसे गाने जो शाम के महफिल को सच में खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आज हम कुछ हटकर करना चाहते हैं, क्योंकि शाम की इस खूबसूरत महफिल में आज हम बातें करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसकी उम्र भले ही छोटी थी लेकिन जिसके विचारों की गहराई अपने समय से कहीं आगे थी। एक ऐसा नौजवान जिसके लिए आजादी केवल विदेशी शासन से मुक्ति का नाम नहीं थी बल्कि एक ऐसे समाज का सपना भी थी जहां इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार मिले। दोस्तों, नाम था शहीद आजम भगत सिंह। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भगत सिंह का नाम साहस, विचार और बलिदान के साथ लिया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी कि 28 सितंबर 2007 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के फैसलाबाद क्षेत्र में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार पहले से ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ऐसे वातावरण में पले बड़े भगत सिंह के मन में देश और समाज के प्रति जागरूकता बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। भगत सिंह की पहचान केवल एक साहसिक क्रांतिकारी के रूप में करना शायद उनके व्यक्तित्व को अधूरा समझना होगा। वे एक गंभीर पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज से जुड़े विषयों का अध्ययन किया। वे अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते भी थे। उन्होंने प्रताप, मतवाला और कीर्ति जैसे प्रकाशनों से जुड़कर लेखन किया। उनके लेखों में केवल अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं था बल्कि समाज, राजनीति और युवाओं की भूमिका पर भी विचार दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज हम जब याद कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह को, तो उन पर कई फिल्में तो बनी लेकिन उस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो आज भी हमें वो जोश दिलाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देश प्रेम होता क्या है। तो ऐसे ही एक फिल्म है जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में है, धर्मेंद्र प्रेजेंटेशन, 23 मार्च 1931 शहीद नाम से। उस फिल्म के कुछ हंसी नगमों को आप तक पहुंचाएंगे शाम के महफिल में।

इतनी कम उम्र में जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार, उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति का स्थायी हिस्सा बन गए। दोस्तों 23 मार्च को आज भी भारत में शहीद दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। भगत सिंह को याद करने का अर्थ, दोस्तों भगत सिंह को फिर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं, उन्हें समझने के लिए उनके जीवन के उस पक्ष को भी देखना होगा जहां एक युवा लगातार पढ़ता है, लिखता है, सवाल करता है, अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करता है। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि युवावस्था केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं बल्कि विचारों और जिम्मेदारी को आकार देने का समय भी हो सकती है। आज हम उनकी शहादत को याद करते हैं तो शायद सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने देश के इतिहास को जानें, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें और समाज में न्याय, समानता और इंसानियत के मूल्यों को महत्व दें। चलिए आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं एक और गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म के कुछ अनमोल नगमे कार्यक्रम शाम के महफिल में। और शाम के महफिल में आज हमने याद किया है शहीद आजम भगत सिंह को। दोस्तों, आज की उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि हम उनका नाम ले, उनकी तस्वीरें देखें या उनके बलिदान को याद करें। शायद उन्हें याद करने का एक अर्थ यह भी है कि हम उस युवा मन को समझने की कोशिश करें जो सवाल पूछने से नहीं डरता था, जो पढ़ने से नहीं थकता था, जो अपने देश के भविष्य के बारे में सोचता था और जो मानता था कि आजादी केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक बेहतर समाज का सपना भी है। तो दोस्तों, आज की इस शाम जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो आइए कुछ पल के लिए इतिहास की उस तस्वीर को अपने मन में रखें। एक बहुत युवा चेहरा, आंखों में सपने, मन में सवाल, हाथों में किताबें और सामने एक ऐसा दौर जिसने उनसे बहुत बड़ी कीमत मांगी। वे चले गए लेकिन उनकी उम्र नहीं, उनके विचार लंबे हुए। उनका जीवन समाप्त हुआ लेकिन उनके नाम के साथ जुड़ी एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद इतिहास में दर्ज हो गई। शायद इसीलिए कुछ लोग उम्र से नहीं अपने विचारों से बड़े होते हैं और भगत सिंह ऐसा ही एक नौजवान थे। आज उनकी जयंती पर हम उस युवा क्रांतिकारी को सिर्फ श्रद्धा से नहीं समझ के साथ याद करें, क्योंकि किसी शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि केवल फूलों से नहीं होती। उसके जीवन को समझना, उसके समय को जानना और उसके विचारों पर विचार करना भी

श्रद्धांजलि का एक रूप है। शहीद आजम भगत सिंह को उनकी जयंती पर हमारा सादर नमन, उनकी स्मृति को प्रणाम, उनके साहस को नमन और उस युवा सपने को सलाम जो आज भी भारत के इतिहास में जीवित है। इसी भाव के साथ अब इस महफिल को एक ऐसे गीत की ओर ले चलते हैं जो भगत जिसके सुर शायद आज की इस शाम के भावों को शब्दों से भी बेहतर कह पाएं।

तो दोस्तों कुछ कहानियां इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ कहानियां इतिहास से निकलकर हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन जाती हैं। भगत सिंह भी ऐसी एक कहानी है। एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन अपने विचारों और साहस से आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ गया। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए शायद यही कहना उचित होगा, भगत सिंह सिर्फ इतिहास के एक पन्ने का नाम नहीं बल्कि उस युवा चेतना का नाम है जो अपने समय को समझना चाहती है, सवाल करना चाहती है और अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखती है। तो दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ आज का शाम का ये महफिल यही थमता है।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार, और अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना तो आप ट्यून इन कर पाएंगे मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र। और अगर आप मेरे साथ जारी रहना चाहते हैं और आगे सफर में जाना चाहते हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। श्रोता दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम का, आज के कलाकार कार्यक्रम। इस सेगमेंट में हम आपके लिए पेश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उन कलाकारों को जिन्हें आप बहुत सारा प्यार करते हैं, जिन्हें आप कुछ कुछ भूल चुके हैं, और कुछ कुछ ऐसे कलाकार जो चमकते सितारों के बीच या चमकते पर्दे के बाहर है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सितारे गए कहाँ, ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। कहते ना, कभी कभी रुपहले पर्दे से कोई चेहरा अचानक ओझल हो जाता है, फिल्में पीछे छूट जाती है, किरदार यादों में रह जाते हैं, लेकिन उस कलाकार की अपनी कहानी एक सवाल बनकर रह जाती है। सोचिए एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने बड़े पर्दे पर देखा, जिसकी अदाकारी को सराहा, जिसका चेहरा 80 के दशक की फिल्मों का जाना माना चेहरा था, और फिर एक दिन वह अभिनेता जैसे कहीं खो गया। न कोई स्पष्ट खबर, न कोई निश्चित ठिकाना, और न ही इस बात का पुख्ता जवाब कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दोस्तों, ये कहानी है राज किरण की, उस अभिनेता की जिसे कर्ज, अर्थ, बसेरा, राज तिलक और एक नया रिश्ता जैसे फिल्मों ने दर्शकों के बीच पहचान दी। दोस्तों, एक ऐसा कलाकार जिसकी जिंदगी का एक अध्याय सिनेमा की रोशनी में लिखा गया, लेकिन दूसरा अध्याय अंधेरे और रहस्य में चला गया। तो आज के कलाकार में हम बात करेंगे राज किरण की, उनके फिल्मी सफर की, उनकी जिंदगी में आए मुश्किल दौर की, और उस रहस्य की जिसने वर्षों से एक सवाल को जिंदा रखा है, आखिर राज किरण है कहां।

0: दोस्तों 80 के दशक में राज किरण उन अभिनेताओं में गिने जाते थे जिनके चेहरे और अभिनय को दर्शक आसानी से पहचान लेते थे। लेकिन फिर आया 90 का दशक, धीरे धीरे उनका फिल्मी करियर कमजोर पड़ने लगा। फिल्मों में उनकी मौजूदगी कम होती गई और फिर एक दिन ऐसा आया जब राज किरण जैसे अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। 1996 में उनकी जिंदगी से जुड़ी एक असामान्य घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज किरण को पुत्तपर्थी स्थित साई बाबा आश्रम में कथित तौर पर रात के समय प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया कि उन्होंने ट्रैक्टर और सीढ़ी की मदद से परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इस मामले में उन्हें 34 दिनों तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। दोस्तों आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए उन्हीं के बहुत ही खास फिल्मों में से एक और आज भी लोग गुनगुनाते हैं, बेहद ही खूबसूरत गीत है। चलिए सुनिए एक ही मकसद फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: दोस्तों आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने।

श्रोता दोस्तों, जैसे कि इस गीत से पहले हमने ये सुना कि उन्हें 34 दिनों तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक पुट्टपुर्थी स्थित साई बाबा आश्रम में कथित तौर पर रात के समय प्रवेश करने की कोशिश की थी। हालांकि अगले साल दिए गए एक इंटरव्यू में राज किरण ने खुद कहा था कि मीडिया ने इस घटना को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। उन्होंने जेल में बिताए समय को बेहद दर्दनाक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाने वाला बताया। इसी दौर के आसपास उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी खबरें सामने आने लगी। फिल्मकार महेश भट्ट ने बाद में बताया कि उन्होंने राज किरण को मुंबई के बाइकुला स्थित मसीना अस्पताल के मनोरोग वार्ड में देखा था। महेश भट्ट के अनुसार वो वही राज किरण नहीं रह गए थे जिन्हें वो पहले जानते थे। उस समय कैमरे के सामने बेहद जीवंत नजर आने वाला यह अभिनेता अब गहरे तनाव और परेशानी से गुजर रहा था। उन्हें दोबारा फिल्मों में लाने की कोशिशें भी हुई लेकिन जिंदगी ने कुछ शायद उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ समय बाद राज किरण अपने भाई गोविंद के पास अमेरिका चले गए और फिर आया साल 2003। न्यूयॉर्क में रहने के दौरान किसी समय राज किरण का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग और निजी जांचकर्ताओं की मदद भी ली गई लेकिन उनकी कोई पक्की जानकारी हासिल नहीं हो सकी और यही से शुरू होती है राज किरण की जिंदगी की वो कहानी जो आज भी एक रहस्य है। साल 2011 में लगा कि शायद यह रहस्य सुलझ गया है। उनके कर्ज के सह सलाहकार ऋषि कपूर अमेरिका गए और उन्होंने राज किरण के भाई गोविंद से संपर्क किया। ऋषि कपूर ने दावा किया कि उन्होंने राज किरण को अटलांटा के एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ढूंढ लिया है जहां वे काम कर रहे थे। यह खबर भारतीय मीडिया में तेजी से फैल गई लेकिन कुछ ही समय बाद राज किरण की बेटी ऋषिका महतानी ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता अटलांटा में नहीं थे और परिवार वर्षों से उनकी तलाश कर रहा था लेकिन उन्हें अब तक उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिली नहीं थी। इसके बाद एक और कहानी सामने आई। कहा गया कि राज किरण को न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा गया था लेकिन यह कहानी भी कभी प्रमाणित नहीं हो सकी। यानी अटलांटा की कहानी हो या न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाने की बात, किसी की भी

आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और आज भी यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर राजकिरण है कहाँ? क्या वह जीवित है? अगर है तो कहाँ है? न्यूयॉर्क से गायब होने के बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ? इन सवालों का कोई पुख्ता जवाब आज तक सामने नहीं आया है और अब इतने वर्षों बाद भी उनकी तलाश पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जुलाई 2026 में अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता सौम्या आली ने एक बार फिर राजकिरण को तलाशने की अपनी कोशिशों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। उन्होंने बताया कि वह वर्षों से इस खोज से जुड़ी है और उनकी तलाश जारी रखने का इरादा रखती है। यानी जिस अभिनेता ने कभी लाखों दर्शकों का मनोरंजन किया था, आज वही अभिनेता खुद हिंदी सिनेमा की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक बन चुका है। राजकिरण की फिल्में आज भी हमारे बीच हैं, उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं, उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनकी अदाकारी आज भी पुरानी फिल्मों के जरिए हमारे सामने आती है, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय आज भी अधूरा है। शायद कभी कोई ऐसी खबर आए जो इस लंबे इंतजार को खत्म कर दे, शायद कभी पता चले कि राजकिरण कहां है और इतने वर्षों में उनके साथ क्या हुआ। तब तक यह सवाल अपनी जगह कायम रहेगा, कहां है राजकिरण? दोस्तों, मैं हूं आप सबकी रेडियो साथी आरजे नोरी और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार कार्यक्रम अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए, आज जब बात छेड़ ही दी है राजकिरण की, तो सुनते हैं उनके ही फिल्म के कुछ हसीन नगमे।

तो दोस्तों, आज के कलाकार में हमने सुना रहस्यमय कहानी एक्टर राजकिरण की। तो इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निश्चित श्रोताओं का समाचार। बने रहे आकाशवाणी के और एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

ci akazmani itano pokuma Sweetball ga alo chemnye ngola lui pipene ndane se urunga kane baje reme tarmelem armena surunga nyesi agum ara mulanji grema targede tacho ba surunga shi tappa chore jabjiran shi nerma akom harre pupabla Surgical strike me nam ham rime sinam unyu nyiri nane ham silo bharat ha managa greek laso ni almane gude ne nyibi nyima ka pame lame sinam policy ham narendra modi ka nyitne nam te lo rigapa kunam ham chivo dogo ne hentom katom pukram ham me pato ok tu ta jen shishtin unyi ka siyuti pol ka alo chemni gula lupipi ne nane lola alo chemigula loku kona nane lo pakistan okofai jammu kashmir gda ga line of control lo ni almane gde ne nimak pale ke dokuba bharat ga army gde ha surgical strike ham rilik jikna maham me patha to ok uri gda lo ni almane gde ha indian army yidum uri gula kona go ba mekmo marjinam le ga ba sok surgical strike jimakam pale grab ga pukuna me ok in kon ni nyur lo mokham arba chetormentor la shigda ga kunam ham japa ba pa me se nad ko ba sok aloha mana ga dukuna me ok 2016 ni ho ni almane gde ga almane ri go mengo ham ramendra sinam ham सरकार है हेनम कानम लीकला 2019 बालाकोट या स्ट्राइक हमला 2025 ऑपरेशन सिंदूर जिमाक हम पालक मिसपुकुरम हमला मैं पाता तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है शिलो गोल्क लाला हेकला अलोलुम गोब मोक ग गदाम लोक बैंक स्ट्राइक हम रिद कुब प्रपोज कुनाम हम रिगयोमा देव मोप कुम हम मेम पातो इंडियन बैंक एसोसिएशन ग अजेन ब आगम आ हम तुलक तोग मिस कुनाम लगा ब सोक स्ट्राइक हम रिग माद कुब आगम हम जाप क जिप कुम ओक मुरुम इंडिया बैंक एसोसिएशन ला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ओक बैंक ग अरा लो रेग कुनाम कने बैंक यूनियन गदग आरा लो सो स्ट्रेग रिग तनाम ग लक लोक आगम आ हम जबदर जापा मे से पुकना बा हमला ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है सोशल मीडिया लो पोस्ट मुल ग ग्रिक ला जापा पुकना बा हम मेम पाता तो मोरग दुनि आलो लो इटानगर लो वर्ल्ड टूरिज्म दे आलो मना ग लो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के गवर्नर केटी परनाइक ये स्टेट टूरिज्म अवार्ड हम जिलन जिप कुम हम मेम पातो ओक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ग्लोक टीकाक होम स्टे हम बेला टीकाक मफ्यूम टूर्स ओक ट्रैवल्स ग सेग कुनाम ह बेस्ट होम स्टे अवार्ड हम पाप कुम सोक्तायो लो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ग Shuchusi hum istehem jiro ok vom dila embassy ga sigo kunam ha commendation award ham larship kuma ham mempa tato ok west coming ms himalaya holiday ham regne tesring wange ye best tour operator award ham larship kuma soktayo lo ms ane siang tours ok expedition ham reg kuna ms bsc voyog itanagar ok gandhi darang ye commendation award ham larishita pukuna ba ok 2017 batch officer lok silem kuna dewangmili district tourism information officer lamwang aran ye best performing tourism officer award ham pap kuma ham mem pa ta to नाहरलगुन तोमोरबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मेडिकल साइंस स्ट्रीम्स लो युबियाराक बपामोब दुकुब सिलो नितने दिल्ली ग सारगंगा राम हॉस्पिटल ग आजेंट ब स्टेट लो रित्रिक ब आके तोकलो आलमान एचे चिलेन कुनाम खम लादर जिप कुम खम मेम पातो ओक स्टेट ग चीफ मिनिस्टर न फेमा खांदो य सिलो ट्रिम्स लो कालु ग ग्रीक ला सोक एच अपेक चिन खम ला ओक एच अपेक चिन ग आनी बुनिने कारिक तारिक सिला आगम आहम जामी शिप कुम ओक सोक एच कारने ग आनी है एच कारने बुरहम आलो आई मेमा ब आरब कादर बुदर ग ग्रिकला आते ग आके हम बुरग लेगा ब जीजी पुकन में हम मेम पा था तो
그 집니스타는 뭐 배마 간도 예소 그리고 맹고함 비비야라 그 뭐파 뭐 누구 뭐 이거 그나 도터스 그드네라 나르세스 테크니시안스 어그 팀 헬스케어 프로페셔널스 그드네 카르타르크 실라 아곰 아함 잠미 시타쿠 그나마 어그 트림 실로 아케그 빌보르함 푸더 몰라 데브 Mogrik la Yumiarak Love Pamov Dokubari Kunam Legab Doctor Harsha Johari Nela Sarganga Ram Hospital Lok and Yigidne Alba Metsal Kunahamla Nerm Kanduya Pangam Agom Ham Japta Pukum Hem Mempa Tato Nulsin Shipuishima Hasbani Etano Pukum Loka Taldonyato Tawak District Lao Gumpa Lok School A Etergudha Silo Rastwati Haban Law President Denetrafodi Murmu Ne Kalktarik Sig Rik La National Integration Tour Imit Lok Lala Hikla School Agha Raspati Baban Lo Kalip Tipkumahamla Nempato. Okaso Agum Aham Jamisir Lo President School Agh Dene Suti Puta Purigoham Alba Relendab Meg Rela Mokne Alba Silen Gulen Mod Bala Development Rilendaglan Gadkuba Rignat Kuka Hamla Jabkuna Baham to Japan Lo Asian Games 2026 Ham Aichi Nagoya lo rikamin ka mise moklo Bharat ka MC Shojan Edapili ye long jump roklo silver medal amin ham pap kuma ok high jump lo home nilo gurga lo ka Bharat ga ba service kusare ye silver medal amin ham pata jip kuma ham mem pato ok soptayo lo squash menam lo sikamis koko lo mok ga lega ba silver edigo pata pukuna me so home nilo blok Abai Singh Pagrik La Home Nimi Hugudga Lok Anahat Singh Guni Pwaj Pukunama Khamla Mempa Tato Ok Dekal Lon Menam Lok Bronze Medal Amin Ham Tejasvin Shankar Ye Pwaj Pukunama Ok Soktayo Lo Home Nimi Gudga Chimri Eni Mitara Gobe Juka Misi Koklo Harita Padra ye bronze medal amin ham pag rik la home nim gudig hajar om mitar gobe juka misi koko lo parul chaudwa ri ye bronze medal amin ham pata pukunam ok sok medal amin pane gudne alba met sad kuna ham la pangnam agom ham president dena drafodi murmu ye jablik jip kuma ham la mem pata do ok so jugo de bharat ha chumum gola ken gobe medal amin ham pap kuma so gold medal Epogola, silver medal, Urugola, Akago, Oka, bronze medal, Urugola, Kernugova, Papkuma, Hamlet, Mempa, Tato, Kasurunga, Shipuya, Herbo.

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दी, हाँ ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
7: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
8: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे लोक सेवा के 25 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के काल पर आधारित यह विशेष प्रस्तुति। आइए चलिए सुनते हैं।

0: साथ ही जुड़ने की दिशा है। किसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और

0: राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
1: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित

तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्तर में इतना डेवलप नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें की इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी करना चाहते हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th edition जो है जनवरी 7/27 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे

0: वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविजन है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहां उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुष्य जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है ना वो लिख सकता है पूरी बात और ना ही वो गणना में निपुण होता है, इसलिए वह मिशन रखा गया था। और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया, और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव न लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रदोषोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया।

0: के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था, तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाए उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
2: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही है, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
0: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में

0: 123 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं।
1: जी
0: इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय,
1: जी
0: यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं यूजीसी में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो
1: जी
0: उनको ऑटोनोमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं। उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशन क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है,
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और आईआईटीज का नंबर बढ़ाया गया है, आईआईएम्स का नंबर बढ़ाया गया है, एनआईटीज बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत सारे खोले गए, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है।
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब
1: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में।

0: ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पे आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा, और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए।
1: जी
0: सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हजार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका, ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में है, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ethics and medical registration board. These are very important aspects of medical education क्योंकि ethics भी उस research के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए तो medical colleges में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत

0: हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पर फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम्स जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। TV ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए, घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
0: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के

0: शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने हैं, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, 9वां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
2: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जांपल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीले देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सकें। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था, बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, ये आकाशवाणी का RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली द्वारा प्रसारित स्पेशल सीरीज कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, 7:45 हो रहे हैं, उसी के साथ ही हम आ पहुंचे अगले पड़ाव की ओर और हम सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने।
1: कुछ कुम झुम झुकुम कुछ कुम झुम झुकुम कुछ कुम झुम।

0: दोस्तों, हिंदी फिल्मी गानों का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन सफर अभी जारी है। आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 8 बजते ही आप सुन पाएंगे अरुणाचली आधुनिक गीतों का गुलदस्ता, अपना गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार, अपने अरुण FM 103.1 MHz के सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अत। तो आइए श्रोताओं, जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना गीत कार्यक्रम इस खमती गीत से।

दोस्तों, अक्सर हम कही सुनी बातों पर बहुत जल्दी यकीन करने लगते हैं। दोबारा हम सोचते तक नहीं हैं, फिर एक और कान में वही बातें पास कर देते हैं और इस तरह से कई बार हमें बहुत नुकसान झेलना भी पड़ता है। कहने का मतलब, जब भी कोई बात सुनते हैं तो हमें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जैसे अभी कोविड वैक्सीन को लेकर कई बातें हो रही हैं, जैसे कि कुछ मीटर की दौड़ लगाए अगर आप हांफते हैं, थक जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वरना ये होगा, वरना वो होगा, और इस तरह की कई अनगिनत बातें चल रही हैं। और हम सही इंसान से इस बात की सच्चाई का पता लगाने के बजाय डर के घर पर बैठ जाते हैं और एक और इंसान से यही बात पास करा के उन्हें भी डरा देते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें नुकसान हमारा ही है। इसलिए कही सुनी बातों पर कभी भी यकीन ना करें, खुद जांच करें, पता लगाए, फिर विश्वास करें। तो आइए श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ अगला गीत है तांबो तामिन की आवाज में, तागिन गीत।

ये था ईदो गीत अजाती मिमी की आवाज में। जो श्रोता हमें अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अपना गीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं अपने राज्य के गीत संगीत। दोस्तों, जब नेगेटिविटी, शक या इनसिक्योरिटी दिल में एक बार पैदा हो जाए ना, तो इसका जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें खोने का डर भी उतना ही होता है। और जाहिर सी बात है, जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोने का डर तो होगा ही, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें खोने के डर से हम उन पर शक करना शुरू कर दें, उनकी हर एक्टिविटीज पर शक करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हम इंसान के हर एक्टिविटीज को गलत तरीके से रिलेट करना भी शुरू कर देते हैं। और अगर रिश्ता प्यार मोहब्बत या पति पत्नी का हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। शक, इनसिक्योरिटी सालों संजोए रिश्ते को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। सभी वादे वफा भूल जाते हैं और बचता है सिर्फ डर, और इस डर की वजह से चिड़चिड़ापन, फिर झगड़ा और अल्टीमेटली रिश्ता खत्म। कहने का मतलब, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, भरोसा रखना बहुत जरूरी है, मगर सामने वाले की हरकतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर जितना हो सके खुद को पॉजिटिविटी से घेर कर रखना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत है जिरी जिर्दो की आवाज में गालो गीत, जहां अपने प्यार को खोने का डर चरम सीमा पर है।

आप सुन रहे थे ताखे रिन्यो की आवाज में आपातानी गीत, और इसी आपातानी गीत के बाद आज का अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ अपना गीत कार्यक्रम का एक और नया अंक के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
0: बन गया बजट?
1: हाँ,
0: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले। ना, पिछले महीने तो ली थी।
0: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
0: बढ़िया, जाओ भाई।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
0: बन गया बजट?
1: हाँ,
0: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
0: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
0: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
0: बढ़िया, जाओ भाई।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे गीतों का गुलदस्ता, यानी कि अरुणाचली गीतों का गुलदस्ता, अपना गीत। अब वक्त है संगीत बदलने का, बस धुन बदलने का, संगीत दिल तक पहुंचती है। अब वक्त हो चला है आपको सुन

तो दोस्तों पाश्चात्य संगीत की दुनिया से निकलकर अब फिर से लौट कर आते हैं हिंदी फिल्मी गानों की तरफ। कुछ ही पलों में यानी कि 9 बजते ही आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोस्तों आज भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में मैंने चुना है फिल्म सिंदूर के कुछ हसीन नगमे।

श्रोता दोस्तों, रात के सुकून भरे पहर में आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, भूले बिसरे गीत। दोस्तों, दिन भर की बागडोर अब जैसे धीरे धीरे थमने लगी है और शहर की आवाजें कुछ कम होने लगी है, और ऐसे में अगर कहीं से कोई पुराना गीत सुनाई दे जाए तो लगता है जैसे बीता हुआ कोई खूबसूरत लम्हा चुपके से हमारे पास लौट आया हो। दोस्तों, क्योंकि पुराने गीतों की खूबसूरती यही है कि वे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल से महसूस करते हैं। आज की इस संगीत यात्रा में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फिल्म के गीतों की ओर जिसके संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की खूबसूरत धुनें और आनंद बख्शी के भावपूर्ण बोल है। और आपने पहला ही गीत पतझड़ सावन बसंत बहार सुन लिया लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। दोस्तों, फिल्म है सिंदूर और इस फिल्म के कुछ हसीन नगमों को आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी के 104.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

रात जितनी गहरी होती जाती है पुरानी यादें उतनी साफ सुनाई देने लगती है। कभी कोई चेहरा याद आता है, कभी कोई पुराना शहर, कभी कोई अधूरी सी बातचीत, और कभी सिर्फ एक गीत ही काफी होता है पूरे बीते हुए दौर को फिर से सामने लाने के लिए। इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म सिंदूर का एक और सुनहरा गीत पतझड़ सावन

संगीत की दुनिया भी कितनी दिलचस्प है। एक ही धुन, एक ही कहानी का हिस्सा, लेकिन आवाज बदलते ही उसका एहसास भी कुछ अलग हो जाता है। श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, मेरे साथ ही यानी आरजे नूरी के साथ, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और अब जरा इस शांत रात में हम आपको ले चलते हैं थोड़ी दूर उन कल्पनाओं की ओर, जहां शहर की भीड़ नहीं, बस साथ चलने वाला कोई अपना हो। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सुनिए चलो चलो दूर कहीं, फिर से फिल्म सिंदूर से।

0: दोस्तों अब जरा माहौल में थोड़ी शरारत हो जाए। पुरानी फिल्मी गीत में प्रेम था, नटखटपन भी था, संकोच था और इशारों में कही जाने वाली वो बातें थी जिन्हें आज के सीरियस अपार्ट शब्द शायद उतना खूबसूरत न बना पाए। तो चलिए इस रात की महफिल में थोड़ी मुस्कान घोलते हैं, सुनते हैं भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में। अगला गीत फिल्म सिंदूर से, आवाजें है किशोर कुमार और हरिहरन की। गीत के बोल है झटपट घूंघट खोल।
1: बोल ए कचुंबर।
2: अरे बोल पाखंडी।
1: तू शुरू करता है क्या?
2: अरे तू ही शुरू कर।
1: अच्छा ठीक है, सुन ले।
2: सुना
1: सरे गरे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गरे गरे सा सा दा सा पा दा गा पा गरे गा सा बोल बोल बोल।

0: तो श्रोता दोस्तों, फिल्म सिंदूर के इस गीत के साथ ही आज के भूले बिसरे गीत की यह खूबसूरत संगीत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। आज हमने सिंदूर के कुछ ऐसे गीतों को याद किया जो हमें सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं सुनाते बल्कि अपने साथ उस दौर की खुशबू भी लेकर आते हैं। शायद यही वजह है कि पुराने गीत कभी सचमुच पुराने नहीं होते। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कोई पुरानी धुन जब कानों में पड़ती है तो दिल कहता है ये तो वही एहसास है जो कभी पीछे छूट गया था। इन्हीं एहसासों और इन्हीं सुनहरी यादों के साथ आज के लिए मुझे यानी आरजे नूरी और प्रसारण अधिकारी होलीराम ब्रह्म और तकनीकी अभियंता प्रसारण अधिकारी गोपाल राय और तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्म को दीजिए इजाजत। आप जहां भी हैं अपने अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी में संगीत के लिए थोड़ी सी जगह हमेशा बचाकर रखें।
1: शुक्रिया। सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी

0: दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1048 या 237-1117 या फिर 237-1106 और 233-1444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी, नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत पीएम जय की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों, वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है, आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा, आप जाएं अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
0: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए। ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल।
3: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया

0: कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानता
1: हूँ। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से या फिर 1455 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार।
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
1: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहां तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए कुछ परिवार जो है PMJAY के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिम केयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूंगा कि PMJAY स्कीम जो है ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या PMJAY के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार PMJAY के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर पीएमजे के अंतर्गत आता नहीं है तब आप देखिएगा कि आप आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप पीएमजे के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1455 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
2: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल।
4: नमस्ते सर।
2: नमस्कार।
4: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
2: जी,
4: छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो किस कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
2: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
1: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि एसईसीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नजदीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी है और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार, लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजे का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
2: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी। जी जोशी जी, क्या है प्रश्न?
5: सर नमस्कार।
2: नमस्कार
5: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
2: जी,
5: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, भी कोई जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है, कुछ 6th में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन अब बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा, तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
1: जगदीश जी

0: प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 1455 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, पर वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, या उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे।
1: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए।
2: जी नमस्कार। नमस्कार, मैं धर्मवीर गन्ने दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
2: मेरे दो सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम सबको जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहां तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीजन बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
0: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीजन हैं, नागरिक है, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में

0: हमारे पास एक कागज में ये सारी चीजें उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागजों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागजों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा दो साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे यूपीआई के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ आभा नंबर बन चुके हैं और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की जरूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका?
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा कुछ दो क्वेश्चन है। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में?
0: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आंख के संबंधित रोग और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर है। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर है। जैसे मैं कहूंगा कि लगभग सभी बीमारियां जो है इसमें कवर्ड है। और जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहां पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहां पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या देना इसमें जरूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जैसे मैं

0: ने कहा 1-4-555, 1-4-5-5-5 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे, आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4-555, 1-4-5-5-5। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
2: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बाद में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो तो आयुष्मान में कवर हो जाएगा? दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, मेरी
0: है। प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या दो बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस के भी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं, आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्कर साहब, की एक हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहां लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके लिए डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नया योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया विषय लेकर फिर होंगे हाजिर। आज्ञा दीजिए, मैं हूं मुनीश शर्मा, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंक रोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई

0: बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के संबंध प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। 1,124 अंक घटकर 72,772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22,780 दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5,000 मीटर फाइनल में पारूल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, The Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said at the same time, the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd of October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment, and close field-level monitoring. Mr. Chauhan said that amid climate change, erratic rainfall and water constraints, food security, and higher farm incomes would require data-driven planning and stronger center-state coordination rather than conventional approaches. The government today launched Pashudhan Bima Portal in New Delhi. Speaking on the occasion, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh said that this initiative is aimed at making livestock insurance services more transparent, efficient, accessible and technology-driven. Mr. Singh said that this portal is an important step towards protecting the livelihood of farmers and fulfilling the vision of Prime Minister Narendra Modi to increase the farmers' income, safeguard the agricultural and livestock assets, and promote the use of technology. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today, with athletes making their mark across shooting, cricket, kurash and boxing. The country added 8 more medals to its tally while the men's cricket team advanced to the semi-finals. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw, with Yashveer Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze. Shrishankar Murli clinched the silver medal in the men's long jump, while Shrishankar's competition ended prematurely after he suffered an injury during his fourth attempt. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi congratulated the medal winners and wished for many more successes ahead. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई नेपाल में हिमलुंग पर्वत के बेस कैंप में हिमस्खलन में 4 लोगों की मौत 12 लापता ईरान ने अमेरिका के विमान प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया और एशियाई खेलों में

0: भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने भी निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: इस बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76.2 अरब डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर है। संयुक्त कार्यबल ने ओडिशा में प्रस्तावित 11.5 अरब डॉलर के एकीकृत एल्यूमिनियम परिसर और गुजरात में फूड पार्क परियोजना सहित कई निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत ने नई दिल्ली में आज हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। बैठक में सैन्य प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, सेनाओं के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग में सहयोग और सशस्त्र सेनाओं के बीच संस्थागत सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के मनांग जिले

0: में हिमलुक पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य लापता हैं। मनांग के मुख्य जिला अधिकारी मुक्ति प्रसाद खनाल के अनुसार हिमस्खलन के समय विभिन्न पर्वतारोहण अभियान के कई अभियान गाइड और सहायक कर्मचारी 7126 मीटर ऊंचे बेस कैंप में थे। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद 11 लोगों से संपर्क हुआ है, जबकि हिमस्खलन के समय बेस कैंप में 27 लोगों के मौजूद होने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की तैनाती के साथ बचाव अभियान जारी है। नेपाल के मनांग समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ के बाद मौसम में सुधार होने से बचाव कार्य में मदद मिली है। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए आज 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच सामान की तेज और कम लागत में आवाजाही संभव होने से द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। भारत और मंगोलिया एक दूसरे के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देते हैं। इसके अलावा ई वीजा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा और आसान हो गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने विमानन क्षेत्र पर अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की विमानन निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। ईरान का उद्देश्य निलंबित उड़ान मार्गों को फिर शुरू करना है। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख अबुजर शिरौदी ने सरकारी मीडिया को बताया कि विदेश मंत्रालय के समन्वय से दर्ज कराए गए विरोध में प्रतिबंधों के कारण उड़ानों में आए व्यवधान से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई। और एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और ईशा सिंह ने भी निशानेबाजी में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am R.S. Raghu with the World News. The headlines. India and UAE agree on timely implementation of trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorists' hideouts in Pakistan. In Nepal, 4 persons killed and 12 others missing as avalanche hits base camp of Mount Himlok. Iran issues formal protest to UN aviation watchdog over US flight sanctions. And at Asian Games